0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: हेलो हाय वेलकम नमस्ते रेडियो मस्ती 24/7 पर स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। मस्ती 90s मिक्स टेप है ये, मैं हूँ आपकी 90s वाली अंतरा आपके साथ। चलिए एक सवाल से शुरू करती हूँ, आपको कैसे पता चलता है कि आप 90s में बड़े हुए हैं? बर्थ सर्टिफिकेट? ना उसको निकालने की जरूरत नहीं है, मैं टेस्ट ले लेती हूँ। घर से निकलते वक्त मम्मी ने पीछे से आवाज कभी लगाई है कि पहुंच के फोन कर देना, और उसका मतलब मोबाइल से फोन करना नहीं था, मतलब था पहले डेस्टिनेशन तक आप पहुंच जाइए, फिर वहां लैंडलाइन लोकेट करिए, और अगर लैंडलाइन नहीं है तो आसपास येलो ब्लैक बोर्ड वो ढूंढना पड़ेगा, STDISTPCO। उसके बाद नेक्स्ट, क्या कभी नए शूज का जो डब्बा है खोलकर जो टिश्यू पेपर अंदर होता था ना उसको भी किसी यूजफुल चीज की तरह संभाल कर अगर रखा गया था? क्या घर में एक ड्रॉर था आपके जिसमें बैटरीज मिलती थी लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कौन सी वर्किंग है और कौन सी वाली डेड है? क्या बर्थडे पार्टीज में रिटर्न गिफ्ट में पेंसिल बॉक्स अगर मिल जाता था तो जेन्युइनली आपको एक्साइटमेंट होती थी? और क्या कभी किसी फोटोग्राफ में आंख बंद आ गई और आपको उसके साथ पूरी जिंदगी आज तक जीनी पड़ रही है? इफ इवन टू ऑफ दीज मेड यू स्माइल, वेलकम बैक, आप बिल्कुल सही जगह पर है। ये है नमस्ते 90s मिक्स टेप, और मुझे इस शो की एक बात बहुत ही ज्यादा पसंद है, हम यहाँ 90s को म्यूजियम में रखकर नहीं देखते हैं, हम उसको ओपन करके उसे यूज करते हैं। कभी किसी ड्रॉर से कुछ निकलता है, कभी किसी गली से किसी की आवाज आ जाती है, कभी स्कूल के बाद का रूटीन, कभी वो चीज जो हर मिडिल क्लास इंडियन घरों में थी बट नोबडी एवर डिस्कस्ड इट, और कभी सीधा बॉलीवुड, बिकॉज 90s इंडिया को हिंदी सिनेमा से अलग करके याद करना पॉसिबल ही नहीं है। एक फ्राइडे फिल्म रिलीज होती थी और कुछ ही दिनों में उसके गाने का कैसेट जो है शॉप से लेकर शादियों तक सब जगह पहुंच जाता था, हीरो का हेयर स्टाइल कॉपी होता था, हीरोइन का सूट मार्केट में आ जाता था, क्रिकेटर का पोस्टर बेडरूम की वॉल पर, फिल्म स्टार्स का पोस्ट कार्ड स्टेशनरी के शॉप पर, और म्यूजिक कंपोजर्स के नाम कैसेट के कवर को उल्टा करके हम पढ़ा करते थे।

सो वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए बिकॉज अगले कुछ घंटे कैलेंडर 2026 रहने देते हैं, बस मेमोरीज की डेट को चेंज कर देते हैं. वेलकम बैक टू द 90s. ये है मस्ती 90s मिक्स टेप.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: जब जब मैं ये शो करती हूँ ना, मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि आई एम सो मच इन टू द 90s दैट तब जो चीज़ें हमने करी हुई थी वो बहुत सारी चीज़ें मैं आज की डेट में भी कंटिन्यूसली करती रहती हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। एक विंटर्स 90s विंटर्स की मॉर्निंग का सीन मुझे याद आ गया। बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ी हुई, एंड आई कम फ्रॉम कानपुर, वहाँ पर बहुत सही ठंड, मस्त एकदम रापचिक ठंड पड़ती है। धूप जो है बालकनी में हल्की हल्की आ रही होती है और विंडो के सिल पर एक ब्लू कलर की बॉटल क्वाइटली सन बेदिंग कर रहा है, वो है पैराशूट के कोकोनट ऑयल का बॉटल। बॉस, घर के मेंबर्स को धूप मिले ना मिले, नारियल के तेल को विटामिन डी मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था 90s में, बिकॉज सर्दियां आते ही कोकोनट ऑयल का ट्रांसफॉर्मेशन आप देखिए। कल तक परफेक्टली ट्रांसपेरेंट जो लिक्विड, सुबह उठकर देखा तो बॉटल के अंदर सफेद सफेद सब कुछ जम गया है। एंड बचपन में मुझे जेन्युइनली फैसिनेटिंग ये बहुत ज्यादा लगता था। बॉटल को उल्टा करो, कुछ नहीं, शेक करो, ठक ठक, ऑयल हिल ही नहीं रहा है। सो मम्मी का सिंपल सोल्यूशन होता था कि धूप में रख दो, पिघल जाएगा। बस बॉटल बालकनी में और हम थोड़ी थोड़ी देर में जाके इंस्पेक्शन की, थोड़ा पिघल गया 10 मिनट के बाद, अब और हो गया। अरे यार, हम आई थिंक ऑयल मेल्ट नहीं कर रहे थे, लाइव साइंस एक्सपेरिमेंट मॉनिटर कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में उसकी रीडिंग्स भी लिखते हुए जा रहे थे। और अगर धूप का पेशेंस नहीं है, देन केम जुगाड़ की इंजीनियरिंग। कभी बॉटल को गर्म पानी के पास रख दिया, कभी मग में, वार्म वाटर। और प्लीज टेल मी, आपके घर में किसी ने बॉटल को अग्रेसिवली प्रेस करके फ्रोजन ऑयल निकालने की कोशिश की थी? क्योंकि हमने तो डेफिनेटली की थी। लेकिन ऑयल पिघलने के बाद असली डेंजर शुरू होता था, बिकॉज मम्मी की नजर पड़ गई। अब आओ, अब तो पिघल गया है, अब इसका तो यूज अभी करना पड़ेगा, तेल लगा देती हूं। एंड वी वर लाइक नो। संडे की चंपी याद है, बीच में वो परफेक्ट वाली मांग निकालकर ऑयल डायरेक्टली आपके स्कैल्प पर, फिर फिंगर टिप्स फुल प्रेशर मसाज, और आप लाइक बस करो, बहुत हो गया। एंड डांट भी पड़ती थी कि चुप बैठो, बाल अच्छे होंगे, बाल लंबे होंगे, तेल लगाना चाहिए, तुम बच्चों को तो कुछ नहीं पता। बट तेल बालों तक कहाँ रहता था मेरे दोस्त। फोरहेड हमारी शाइनी, कान के आसपास शाइनी, नेक तक एट टाइम शाइनी हो जाता था। आपको लग रहा है कि चंपी हुई है, दुनिया को लग रहा है बच्चे को वार्निश कर दिया गया है, और उसके बाद फिर कोम किया जाता था। हेयर इतने नीटली चिपका दिए जाते थे कि हवा क्या कर सकती है, साइक्लोन आ जाए, हेयर स्टाइल हमारा वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। फनी ना, आज हम हेयर सीरम्स, मास्क्स, लीवन्स, स्कैल्प ट्रीटमेंट्स, ये सारी चीजें यूज करते हैं। तब हेयर केयर का वोकैबुलरी काफी छोटा था, तेल लगाया बस, और वो ब्लू बॉटल धूप में रखा हुआ। इतना ऑर्डिनरी सा विजुअल था कि तब किसी ने फोटोग्राफ भी नहीं ली इसकी। बट टुडे सिर्फ इमेजिन करिए, विंटर की हल्की सी धूप, बालकनी, मम्मी की आवाज और वो बॉटल स्लोली ट्रांसपेरेंट होती हुई, पूरा घर याद आ जाता है। 90s नॉस्टैल्जिया बिना कभी किसी ब्लॉकबस्टर में नहीं मिलता, कभी कभी बस एक जमी हुई तेल की बॉटल में मिल जाता है। स्टे ट्यून्ड।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026।
3: आया देखो आया बप्पा मोरिया।
2: हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th टू 18th सितंबर, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।

0: कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार्ट पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: नाइन्टीज में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसका रिटायरमेंट उसके साथ लिखा हुआ आता था। जब तक उसकी आखिरी सांस तक हम लोग नहीं कर लेते थे उसको पूरा यूज, तब तक वो तो एग्जिट मारता ही नहीं था, है ना, है ना। रेडियो मस्ती 24/7 पर मैं अंतरा आपके साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। आपके घर में पुराना टूथब्रश कहाँ जाता था, डस्टबिन में? नाइस ट्राई। 90s के घरों में टूथब्रश की रिटायरमेंट नहीं होती थी, इनफैक्ट इन दैट केस देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी रिटायरमेंट कभी भी नहीं होती थी, उसका बस डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता था। जिस दिन नया टूथब्रश आया, पुराने वाले को लगा होगा चलो सर्विस हमारी कंप्लीट हो गई, बट नहीं, इतनी जल्दी कहा, अभी तो हमारी इस सेकेंड इनिंग्स यहाँ पर शुरू होती है। बाथरूम ड्यूटी से ट्रांसफर क्लीनिंग डिपार्टमेंट, और फिर वो टूथब्रश घर के सबसे डिफिकल्ट असाइनमेंट्स हैंडल करता था। टैप के आसपास वाली वो छोटी छोटी जगह टूथब्रश पुरानी वाली ले आओ, बाथरूम के टाइल्स का कॉर्नर टूथब्रश, कॉम्ब्स के बीच में कुछ अटक गया है वही टूथब्रश फिर यूज करो, शूज के सोल के साइड में मिट्टी लग गई है, गेस व्हाट, टूथब्रश पुराना वाला वो जो रखा हुआ है ना ले आओ, उससे साफ करेंगे। एंड एक स्टेज के बाद तो उस टूथब्रश की आइडेंटिटी कंप्लीटली खत्म ही हो जाती थी। आप पूछो कि ये किसका टूथब्रश था, एंड सब देख के कहते अब फिलहाल तो किसी का ही नहीं है, सफाई का है, सिटीजनशिप ही कैंसिल कर दी, न्यू पासपोर्ट इशूड। और घर में कभी दो पुराने टूथब्रश मिल जाए तो कंफ्यूजन कि ये क्लीनिंग वाला ही है ना, हाँ पक्का ना, हाँ हाँ, सो पक्का का कॉन्फिडेंस किसी के पास नहीं है यहाँ पे, लेट मी टेल यू दैट। एंड 90s के घर की एक क्वालिटी मुझे आज भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, चीज खत्म होने और चीज बेकार होने में ठीक है डिफरेंस था। टी शर्ट छोटी हो गई है, पोछा बन सकती है, ग्लास जार एम्प्टी हो गया है, मसाला आ जाएगा, गिफ्ट रैपिंग पेपर अच्छा है, अच्छा आराम से निकालो, फोल्ड करके उसको बेड के नीचे रख दो, रबर बैंड ऑफ कोर्स संभाल के रखो, और टूथब्रश बॉस उसके करियर ऑप्शंस तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिए हैं, हम उसको रिसाइकलिंग अपसाइकलिंग सस्टेनेबल लिविंग कुछ नहीं कहते थे, देयर वाज नो फैंसी टर्मिनोलॉजी, बस एक सेंटेंस, फेंको मत काम आ जाएगा, एंड somehow काम आ भी जाता था। आज कभी किसी ओल्ड टूथब्रश को सिंक के नीचे क्लीनिंग सप्लाईज में साथ में देखती हूँ, जो कि मेरे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको मेरे घर में मिल जाएगा, इंस्टेंटली जो है आपको भी वो इट विल जस्ट टेक यू बैक टू योर चाइल्डहुड, बिकॉज अपेरेंटली नॉस्टैल्जिया को ट्रिगर करने के लिए कैसेट या ओल्ड फोटोग्राफ की जरूरत ही नहीं, कभी कभी एक टूथब्रश भी काफी होता है, जो ऑफिशियली ब्रशिंग से रिटायर हो चुका है, लेकिन घर वाले अभी तो बोल रहे हैं कि बेटा रिटायरमेंट भूल जाओ, मंडे से टैप्स वाली ड्यूटी तुम्हारी है। Stay tuned to Radio Masti 24/7, जहां पर आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्सटेप, मैं हूं 90s वाली अंतरा आपके साथ।

0: दिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7 मस्ती 90s मिक्सटेप। आप सुन रहे हो, मैं हूं अंतरा आपके साथ यहां पर। 90s के घर में एक्सरसाइज करने के लिए जिम मेंबरशिप नहीं चाहिए थी दोस्त, बस मम्मी को झाड़ू लगाना शुरू करना था और सोफा पर आराम से आप बैठे हुए हो, ठीक है, टीवी देख रहे हो, पैर नीचे और दूर से अगर दिख जाए मम्मी भी, या फिर घर में अगर आपके काम वाली दीदी या कोई आती थी तो उनका भी जो है, जैसे जैसे झाड़ू पास आ रही होती है ना, आपको पता है कि आपकी बारी आने वाली है कि पैर ऊपर करो और हम दोनों पैर ऊपर सोफा पर झाड़ू लगते रही, स्विश स्विश स्विश नीचे से निकल गई एंड आगे बढ़ गई, फिर हमने पैर वापस नीचे रख लिया, दैट्स इट। पोछे के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, 3 सेकंड का एक्चुअली वर्कआउट ही समझ लीजिए, यू नो, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, एक बार झाड़ू के लिए, दूसरी बार पोछे के लिए। बट लेकिन कभी ऐसा जो है मम्मी मूड में हो और बोले कि उठ जाओ जरा सोफे के नीचे भी साफ करना है, अब प्रॉब्लम है, बिकॉज सोफे के नीचे की सफाई नहीं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होने वाला है, क्योंकि झाड़ू जब अंदर उसमें आती थी और एक एक करके हिस्ट्री बाहर आती थी, उधर हमारी जो है थोड़ी सी बैंड बच जाती थी, कभी एक पेंसिल निकल रहा है, दो कॉइन्स निकल रहे हैं, कोई हेयर क्लिप निकल रहा है, बॉटल की कैप निकल रही है, कोई एक मिस्टीरियस से पेपर का टुकड़ा निकल रहा है, कोई छोटी सी चीज जो 3 महीने पहले खो गई थी, एंड यू गो लाइक ओ अच्छा ओ यहां था, एंड देन मम्मा गोज लाइक कि अगर कभी सफाई गलती से कर लिया करो तो पता भी रहेगा। और बेड के नीचे वो तो अलग ही यूनिवर्स, बॉल चली गई बेड के नीचे, देखो स्लिपर नहीं मिल रही बेड के नीचे, देखो रिमोट इज मिसिंग, फर्स्ट सस्पेक्ट बेड के नीचे देखो। आज भी बाय इंस्टिंक्ट कुछ अगर घर पे नहीं मिल रहा हो तो बेड के नीचे एक बार तो हर कोई झांक के देखता है। 90s का गूगल सर्च बेसिकली, आई थिंक मेरे घर में तो मेरी मम्मी थी, मम्मी मेरी ज्योमेट्री बॉक्स का है, मम्मी अलमारी के पास देखो, देन अनबिलीवेबली वहीं पर ही मिल जाती थी। हमारा ये रनिंग जोक है इन द फैमिली कि मतलब हमने पूरा यू नो घर सर्च मार लिया, हमको नहीं मिला, लेकिन जो जगह हमने देखी हुई थी जैसे ही मम्मी आई वहां पे मैजिकली वो सामान अपीयर हो जाया करता था, एंड वी गो लाइक पता नहीं कौन सा जादू करती है मम्मी, मम्मी को मिल जाता है हमें नहीं मिलता, है ना। आई नो अ लॉट ऑफ यू कैन जो है रिलेट विद दिस वन, बट वेल या हमारे घर में तो पोछे का आज भी डर है, अगर घर में पोछा लग रहा हो और ऊपर पंखा चला दिया गया हो, हम अभी भी पैर नीचे नहीं रख सकते कि घर में पैरों के निशान हो जाएंगे। भाई आप, ये 90s का खौफ है दोस्त, ये जाए नहीं जाता, ये हमारे साथ ही जाएगा अब। आपको नहीं लगता, मुझे तो ऐसे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, अगर आपको भी कभी मेरी बातें सुनते हुए लगे कि ओ ये तो ऑफ कोर्स अंतरा, फील फ्री टू राइट टू अस 9158963 पर।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: आइए चलिए एक 90s के घर के फैमिली मेंबर को याद करते हैं। फैमिली फोटो में ये कभी नहीं आया, लेकिन घर का ऑलमोस्ट हर मेंबर के बालों से इसका पर्सनल कनेक्शन था। वेलकम बैक टू मस्ती 90s मिक्स टेप ऑन रेडियो मस्ती 24/7 में 90s वाली आंत्रा आपके साथ। और ये कौन है, कौन है ये? वो एक पुराना कंघा या कंघी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। कंघा वॉज द बिग वन, कंघी वॉज द स्मॉल वन, जो पापा लोग अपने जो है पैंट की जेबों में लेकर घूमते थे। नाउ कंघा जो है, जिसके सारे दांत कभी कंप्लीट नहीं होते थे, एक यहां से मिसिंग, दो बीच से मिसिंग, एक साइड से थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन किसी ने कभी नहीं कहा दैट ये कंघा जो है वो, या कोम जो है वो टूट गया है और इसको फेंक दो। एक्सक्यूज मी, टूटा कहाँ है? अभी तो 70% दांत इसमें बाकी है। 90s में चार दांत मिसिंग होने का मतलब ब्रोकन नहीं था बॉस, एक्सपीरियंस्ड इसको कहा जाता था। और घर में एक कोम का परमानेंट एड्रेस होता था, ड्रेसिंग टेबल के पास, मिरर के नीचे या किसी ड्रॉर में, और वो टेक्निकली किसी एक का नहीं था, दैट वॉज पब्लिक प्रॉपर्टी। पापा ने यूज किया, भाई ने यूज किया, आपने यूज किया, मम्मी ने देखा, और इसमें इतने बाल किसने छोड़े हैं? साइलेंस, साइलेंस। सडनली कोम का ओनर कोई भी नहीं था वहां पे, और कोम क्लीनिंग इटसेल्फ वाज एन एक्टिविटी। उसके दांतों के बीच जो बाल फंसे हुए हैं, पहले तो वो मम्मी उंगली से खींच खींच के, अगर नहीं निकले तो पिन लाओ, या फिर एक दूसरा कोम लेकर पहले कोम को क्लीन करो, या फिर वो जो टूथब्रश की हम बात कर रहे थे उसको यूज करो। मतलब कोम का भी कोम होता था। या दैट्स सो 90s। और कभी जो है ये सारी चीजें जो है एक दिन पूरी क्लीनिंग सेशन, एंड स्पेशली ये संडेस को मम्मी मिशन लेकर बैठती थी कि सोप वाला पानी किया एक टब में और उधर डाल दिए सारे, और बैठ के अब उसको क्लीनिंग की जाती थी। भाई 90s का हाउस होल्ड स्टाफ वॉज एक्चुअली मल्टी स्किल्ड, बट कोम का सबसे डेंजरस मोमेंट, गीले बाल, एंड देन मॉम सेज दैट इधर आओ बाल बना देती हूँ, आप ऑलरेडी सस्पिशियस, पहला स्ट्रोक खचाक धीरे करो। मतलब देन फिर डांट भी पड़ती थी कि पता नहीं क्या करते हो बालों के साथ, इतनी क्यों गांठ इसमें पड़ी हुई है, एंड ऑल दोज थिंग्स, इतने क्यों उलझे हुए हैं। एंड हम कहते थे कि भाई हमने जान बूझ के थोड़ी ना लगाई है। फिर एक एक हाथ से बाल पकड़ो, दूसरे हाथ से कोम्ब, एंड हमारा हेड हर स्ट्रोक के साथ पीछे, इट वॉज लाइक अ नेक एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट्री वाला। और अगर स्कूल जाना है, परफेक्ट सेंटर पार्टिंग, कोम्ब का पॉइंटेड हैंडल या उसका कॉर्नर यूज करके लाइन खींच दी, ठीक है, लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, ऑयल लगा हुआ है तो बस बोनस ही है। पार्टिंग इतनी स्ट्रेट की ज्योमेट्री टीचर अप्रूव करते, इतनी स्ट्रेट। फनी थिंग इज आज डिटैंगलिंग ब्रशेज है, वाइट टूथ कोम्स है, आई हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्रशेज फॉर माई इतने से बाल, ठीक है। स्कैल्प कोम्ब भी है मेरे पास, यस, डिफरेंट टूल्स है डिफरेंट हेयर टाइप्स के लिए। तब एक कोम को देखो, हाफ टीथ मिसिंग, हैंडल स्क्रैच्ड, एज अननोन, स्टिल स्टैंडिंग प्राउडली ऑन द ड्रेसिंग टेबल लाइक अगला कौन है। एंड मे बी दैट्स व्हाई These tiny things stay with us, because 90s घरों में चीजों की एक्सपायरी डेट हम डिसाइड नहीं करते थे, जब तक वो किसी ना किसी तरह के काम कर रहा है उसकी नौकरी सेफ है। सो here's to that veteran family का कंघा जिसके दांत कम हो गए, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, और रिटायरमेंट वो वर्ड उसके कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं। Stay tuned to Radio Masti 24/7।

0: cup.
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
0: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
1: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: Gigi.
1: Crushable nuts only on GigiMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
4: It's a must-be partner event.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतराप के साथ, यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्सटेप। एंजॉयिंग स्माइल तो देखो, ओह माय गॉड। चलो इसी स्माइल को और भी बड़ा कर देते हैं और लाते हैं एक गर्मा गर्म प्लेट ऑफ चावल, सफेद सफेद खिले खिले। बीच में स्पून से बनाया हुआ एक छोटा सा गड्ढा और इस उसमें एक स्पून गड्ढे में घी डाल दो, बस 90s का आई थिंक फूड स्टाइलिंग कंप्लीट हो गया। नो रिंग लाइट, नो ओवरहेड शॉट, नो वेट, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा खाने को, पहले मुझे फोटो खींचनी है। ये भी कुछ नहीं होता था, खाना गरम है खा लो अभी के अभी। लेकिन गरम चावल में घी डालने का वो मोमेंट, उफ माय गॉड, घी स्पून से गिरा, राइस की हीट से वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होता था, याद आया? जस्ट विजुअलाइज दिस, ओके, फॉर मी जस्ट विजुअलाइज दिस। और वो लिटिल क्रेटर जो है सडनली गोल्डन सा हो गया, फिर साइड से गर्मा गर्म दाल और हम स्पून लेकर उस क्रेटर की इंजीनियरिंग को डिस्ट्रॉय कर देते थे, मिक्स मिक्स मिक्स मिक्स। और घर में किसी का अपना रेशियो होता था, कभी कोई बोलता था कि थोड़ा इसमें और घी डाल दो, या फिर कहता था नहीं ये बहुत है, बस थोड़ा सा। एंड मम्मी का थोड़ा और हमारा थोड़ा, कभी ये मेजरमेंट आज तक सेम हुआ ही नहीं है। सो कभी दाल चावल, कभी राजमा चावल, कभी खिचड़ी के ऊपर। और घी जैसे ही गर्म फूड को टच करता था ना, वो जो खुशबू, ओ माई गॉड, आज भी समवेयर इंस्टेंटली ऐसी आ जाती है ना खुशबू, इट इज़ लाइक घर, बस घर। और 90s में डिनर टेबल भी कितना डिफरेंट था, राइट? फूड जो है वो पहुंचा एंड एवरीबडी स्टार्टेड ईटिंग। कोई प्लेट को 45 डिग्री के एंगल पर घुमाकर फोटोग्राफ नहीं ले रहा होता था, कोई कोरिएंडर रीपोजिशन नहीं कर रहा होता था, कोई नहीं बोल रहा कि यार गाइज फोन ईट्स फर्स्ट, ओके, नो, फोन तो दूसरे रूम में था बॉस, वो भी लैंडलाइन, उसको भूख नहीं लगती थी। और प्लेटिंग, भाई अगर आपको चावल सर्व किए गए, दाल डाली, सब्जी साइड में, पापड़ है तो जैकपॉट लग गया आपका, अचार का एक टाइनी सा पोर्शन एंड बस। मिशलिन इंस्पेक्टर घर नहीं आ रहा था, लेकिन टेस्ट, उसके लिए वोकैबुलरी की जरूरत ही नहीं थी हमें। कभी कभी ऐसे ही कोई पूछती थी कि क्या खाओगे स्कूल से

आए, बैग रखा, किचन में झांका, क्या बना है, आंसर मिलता था और पता चल जाता था कि आज तो बेटा सेकंड हेल्पिंग होगी ये, या अचार के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वो तो इवेंचुअली हमको देखना ही पड़ता था। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स फूड सच अ पावरफुल मेमोरी। रेसिपी याद हो ना हो, रिचुअल याद जरूर रहता है। गरम चावल का स्टीम, स्टील की प्लेट, स्पून का वो साउंड, दाल की वो खुशबू और बीच में वो लिटिल वेल ऑफ घी, वेल जिसको हमने कभी स्पेशल उतना माना नहीं, बिकॉज तब वो नॉस्टैल्जिया नहीं था, वो बस एक लंच था या डिनर था, और शायद इसीलिए आज इतना स्पेशल लगता है। 90s के कुछ बेस्ट मेमोरीज फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स में नहीं बने थे बॉस, वो गरम दाल चावल के बीच एक स्पून घी डालकर बनी थी, है ना। भूखी लग गई इतनी सारी बात करके, हाय।

सुल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। नाइन्टीज की एक छोटी सी ट्रेन जर्नी पे चलेंगे मेरे साथ, चलिए साथ साथ में जाते हैं। हाँ, पूरी और सब्जी भी पैक कर लीजिएगा अचार के साथ। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ, मस्ती 90s मिक्स टेप बिल्कुल आप सुन रहे हैं। मैं हूँ 90s वाली अंतराब के साथ। मैं तो ऐसे ऐसे विजुअल ही आपको देते हुए जाऊंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि सडनली आप टेलीपोर्ट हो गए हैं 90s के उस टाइम में। भाई 90s में ट्रेन जर्नी में एक चीज थी जिसके लिए सिबलिंग्स के बीच सीरियस कॉम्पिटिशन हो सकता था और हुआ भी है, वो है विंडो सीट। मैं पहले बैठा था। नहीं, जाते टाइम तुम बैठी थी, अब मेरी टर्न है। एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स बन जाते थे सुप्रीम कोर्ट, उनका वर्डिक्ट आता था आधा आधा टाइम बैठना है दोनों को। बिकॉज विंडो सीट सिर्फ सीट नहीं थी, वो हमारा गूगल मैप्स था। सो ट्रेन चल रही है, फेस ऑलमोस्ट विंडो की ग्रिल से चिपका हुआ है, बाहर फील्ड्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स जो ट्रेन के साथ रेस कर रहे हैं, कभी नदी कभी लेवल क्रॉसिंग पर खड़े लोग, और हमारा फेवरेट गेम, अगला स्टेशन कौन सा है। ट्रेन स्लो होने लगी, प्लेटफॉर्म दिख रहा है और हम नेक स्ट्रेच करके ऐसे करके ढूंढ रहे होते हैं कि वो आइकॉनिक येलो बोर्ड विद ब्लैक लेटर्स कहां लिखा है। उधर उधर उधर उधर बोर्ड पास आया, नाम पढ़ा और बस लोकेशन अपडेटेड, कोई ब्लू डॉट नहीं, नो यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, नो 47 मिनट्स रिमेनिंग। ओह माय गॉड, आई रियली साउंड लाइक वन राइट। जर्नी का प्रोग्रेस स्टेशन के नाम से समझ आता था कि अभी और कितने स्टेशन दूर है, 4 स्टेशन दूर है, फिर 2 मिनट बाद सेम क्वेश्चन, अब आप कितनी, अब भी 4 है, ट्रेन स्टेशन क्रॉस तो करने दो। और अगर कोई बड़ा जंक्शन आ रहा हो, सडनली कंपार्टमेंट में एक्टिविटी कि यहां ट्रेन कितनी देर रुकेगी, पानी भर लेना, कुछ लेना है क्या। प्लेटफॉर्म पर से आवाजें आती थी टिंग टिंग, ये वाली ट्रेन इधर से निकल कर इधर को जाए।

की इस वक्त इतनी डिले चल रही है. एंड जब कोई मेजर स्टेशन आता था ना, तो वो पता आपको उसकी फील भी बहुत अलग से जाती थी. और वो साउंड ऑफ चाय, गरम चाय, चाय, समोसा, समोसा, फ्रूटी फ्रूटी फ्रूटी फ्रूटी, ट्रेन की विंडो से वो ट्रांजैक्शन करना, पैसे बाहर समोसा अंदर, 90s का क्विक कॉमर्स है ये. फिर विसल या ट्रेन की वो छोटी सी जर्क, एंड देन मम यूज टू बी लाइक बस बस चलो ट्रेन चल रही है. विंडो के बाहर प्लेटफॉर्म स्लोली स्लोली पीछे जा रहा है, द पीपल, द स्टॉल्स, द येलो बोर्ड, धीरे धीरे सब डिसअपियर होता हुआ जा रहा है. एंड द जर्नी कंटिन्यूज वापस से फील्ड्स वगैरह में. एंड देयर वाज समथिंग लवली अबाउट नॉट नोइंग एवरी सेकेंड एग्जैक्टली वेयर यू वर, बिकॉज यू वॉच्ड, यू वेटेड, यू गेस्ड. कभी को पैसेंजर से पूछा है कि भाई साहब कानपुर कितनी देर में आएगा? और उनका एस्टिमेट ही लाइफ ट्रैकिंग हुआ करता था. रात की ट्रेन जर्नी का अलग ही मूड हुआ करता था. नहीं, विंडो से बाहर ऑलमोस्ट डार्कनेस, राइट? कभी किसी स्टेशन की ब्राइट लाइट सडनली अपीयर हो जाती थी. आप नींद में आंख खोलकर पहला सवाल, कौन सा स्टेशन है? व्हाई डिड वी नीड टू नो? पता नहीं, बट वी हैड टू नो. आज ट्रेन में फोन खोलकर एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं आप, ETA पता है, नेक्स्ट स्टेशन पता है. बट बचपन की जर्नीज में हम मैप को नहीं देख रहे थे, हम इंडिया को विंडो से देख रहे थे. और एक येलो बोर्ड कुछ सेकेंड्स के लिए सामने से गुजरता था, नाम पढ़ा और दिल में, अच्छा हम अब यहां पहुंच गए हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
2: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर.
3: जीजी
2: Crushable nuts only on GGMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
3: GGMart, your personal grocer.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: क्या याद दिला दिया श्रेया, तुमने क्या ही याद दिला दिया, स्केच पेन्स को याद दिला दिया। ऐसे थोड़ी ना कोई करता है, ऐसा ही करता है। मस्ती 90s मिक्सटेप चल रहा है ऑन रेडियो मस्ती 24/7। यही तो वो बात है, यही तो मैं कह रही थी कि अगर कुछ ऐसा याद आ जाता है बिंदास हमारे साथ यहाँ पर शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग ना, राइट। 90s के बचपन का एक बड़ा झूठ मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। 12 स्केच पेन्स, पैकेट में टेक्निकली 12 होते थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद वर्किंग कंडीशन में मे बी 7.5 स्केच पेन्स। और सबसे पहले कौन जाता था, कौन जाता था, हु विल टेल मी, रेज योर हैंड्स। ब्लैक कलर का स्केच पेन। फिर कौन सा जाता था, रेड कलर का स्केच पेन, बिकॉज अपेरेंटली हमारे हर मास्टर पीस को ब्लैक आउटलाइन चाहिए थी। नया स्केच पेन का बॉक्स खुलना सिर्फ एक इवेंट नहीं था, सारे पेन्स एकदम लाइन में, येलो, ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, ब्लू, कैप्स परफेक्ट, टिप्स भी एकदम उसके परफेक्ट। और पहले दिन हम उनको इतने प्यार से यूज करते थे कि कैप लगा देना, नहीं तो ड्राई हो जाएगा। एक हफ्ते बाद हमसे वही सेम स्केच पेन्स के बारे में देख लो कि हालात, एक पेन बेड के नीचे बिना कैप के मिल रहा है, उसका करियर ही खत्म हो गया है। लेकिन 90s का बच्चा हार मानता था क्या? स्केच पेन अगर फेंट हो रहा है, नॉर्मल लोग बोलते थे इंक खत्म, हम पेपर पर और जोर से थोड़ा प्रेस करो, जैसे इंक अंदर बैठी बोल रही हो, प्रेशर बढ़ाओ तभी बाहर आओगी। फिर पेन को शेक किया, शेक शेक शेक शेक, स्क्रिबल किया, नथिंग, कैप लगाओ, 5 मिनट बाद वापस से चेक करो, मे बी रेस्ट करके रिकवर हो गया हो। और एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट तो ऑलमोस्ट आई एम श्योर हर किसी ने किया होगा, टिप ड्राई है, थोड़ा पानी, बस थोड़ा सा, अप्रोक्सीमेटली 14 seconds, ओ माई गॉड, इट्स वर्किंग। आपने स्केच पेन खोल के अंदर से उसका वो जो है अंदर वाला पोर्शन निकाल कर उसमें पानी किया है ना, सो फिर कलर इतना वॉटरी कि रेड स्केच पेन से पिंक पिंक सा भी निकलने लगा था। एंड 90s की ड्रॉइंग सटली सटलटी की नाम की कोई चीज हमें तो पता ही नहीं थी। ब्राइट येलो स्काई, फुल ब्लू ग्रास, एक ही ग्रीन हाउस, रेड रूफ कंपल्सरी, याद है ना, है ना, ट्री का ट्रंक ब्राउन, क्लाउड्स ब्लू आउटलाइन, और कॉर्नर में वो क्लासिक हमारा सूरज, ठीक है, आधा सर्कल विद फुल रेज। और अगर स्कूल प्रोजेक्ट है, बॉस स्केच पेन सडनली प्रोफेशनल इक्विपमेंट बन जाते थे। हेडिंग रेड में, सब हेडिंग ब्लू में, इंपॉर्टेंट वर्ड्स ग्रीन में, ब्लैक से बॉर्डर, फिर रूलर के साथ डबल लाइन, और एंड में पेज को दूर से देख कर कि अब लग रहा है प्रोजेक्ट। ग्लिटर पेन आ गया तो थोड़ा सा स्टेटस जो है अपग्रेड हो गया, मेटालिक सिल्वर या गोल्ड मिल गया, अब हर हेडिंग को अवार्ड सेरेमनी हम बना के रहेंगे। But tell me this, स्केच पेन का कैप लगाते वक्त वो लिटिल क्लिक और नया पेपर पर चलने का वो स्मूथ डार्क फर्स्ट स्ट्रोक, डू यू रिमेम्बर दैट? बिकॉज 90s का कलर पैलेट शायद तो बिल्कुल नहीं था, हम फ्लोरोसेंट पेंसिल बॉक्सेस यूज करते थे उस टाइम पे, ब्राइट हेयर क्लिप्स, कलरफुल इरेजर्स, नियॉन स्टेशनरी, और ड्रॉइंग्स भी वैसे ही लाउड, हैप्पी, फुल कलर मोड में। मे बी दैट्स वाई व्हेन आई थिंक ऑफ द 90s मेमोरी, मुझे बेज या म्यूटेड टोन्स या पेस्टल शेड्स में ही दिखती नहीं है। मेरे लिए 90s का चाइल्डहुड एक ब्रांड न्यू स्केच पेन बॉक्स के जैसा है, थोड़ा मिसमैच्ड, थोड़ा सा मेसी, ब्लैक पेन ऑलरेडी खत्म, बट बाकी सारे कलर्स फुल ऑन।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s।

रील से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। Welcome back, मस्ती 90s mixtape enjoy कर रहे हो आप रेडियो मस्ती 24/7 पर। मैं अंशरा आपके साथ यहाँ पर, एंड 90s के लोकल मार्केट में चलिए हाथ पकड़िए, साथ में चलते हैं। और अब हम जाएंगे इस दुकान में, ठीक है। इमेजिन करिए दुकान का एक्चुअल साइज इज छोटा सा, ठीक है। उसके अंदर सामान इज लाइक बहुत सारा, ऐसा लग रहा है पूरे यूनिवर्स का सामान इस दुकान में रखा हुआ है। फ्लोर से लेकर सीलिंग तक शेल्व्स ही शेल्व्स, पैकेट्स के पीछे पैकेट्स, डब्बे के ऊपर डब्बे, कुछ सामान लटक रहा है कुछ काउंटर के नीचे, कुछ इतनी ऊपर रखा है कि आप सोच रहे हो कि ये बिकता कैसे होगा, बिकॉज हमें तो दिख ही नहीं रहा है। और दुकानदार वाले अंकल बॉस, ही वॉज ह्यूमन सर्च इंजन, इनफैक्ट नॉट इवन नॉट हिम, ओके, द छोटो इन द दुकान वॉज द ह्यूमन सर्च इंजन। ओ माई गॉड, अंकल वो छोटा वाला फेविकॉल है क्या? अंकल ने आपकी तरफ देखा भी नहीं, हाँ है, कहाँ है, हम 10 मिनट से पूरी शॉप स्कैन कर रहे हैं, हमें तो दिख नहीं रहा। अंकल या छोटू जो उस दुकान में होता था, स्टूल उठाते थे, एक लंबी सी स्टिक निकालते, सीलिंग के पास रखे 3 पैकेट साइड करते, स्टिक से एक बॉक्स को हुक किया, खटाक सीधा हाथ में ये वाला। हमें लगता था ये कौन से टाइप का मैजिक कर रहे हो अंकल, एंड कभी बोलते कि अंकल ब्लू में है, एंड अंकल ब्लू खत्म है, ग्रीन है। कंप्यूटर चेक किया, बार कोड स्कैन किया, वेयरहाउस कॉल किया, नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं, उनके दिमाग में ही पूरी इन्वेंट्री ऐसी बसी हुई होती थी, ब्लू खत्म है, ग्रीन के 4 रखे हुए, रेड का पैकेट कल आएगा, और जो आइटम्स 6 महीने से किसी शेल्फ के पीछे पड़ा है उसकी लुक

हम अभी फर्स्ट टू नंबर्स ऐड ही कर रहे होते हैं, और अगर रेगुलर शॉप थी इवन बेटर। आप अंदर गए कि भाई मम्मी ने चाय पत्ती मंगाई है, अंकल वही वाली, हाँ, ब्रांड बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। दैट्स व्हाट आई मिस मोस्ट अबाउट दोज लिटिल मार्केट्स। शॉपिंग सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं था, राइट? दुकानदार को पता है कि घर में कौन सा वाला, कौन से ब्रांड का बिस्किट जाता है, कौन सा डिटर्जेंट जाता है, कभी मम्मी का नाम, कभी पापा का अकाउंट, और कभी तो आपको देखकर ही कि अच्छा स्कूल से आ गए, आज इन्वेंट्री क्लाउड में है, बार कोड में है, ऐप बता देता है कि 2 लेफ्ट इन स्टॉक। 90s में क्लाउड कुछ नहीं था बॉस, एक छोटी सी दुकान थी, सीलिंग तक सामान था, और अगर काउंटर के पीछे एक अंकल वो थे जिनके दिमाग में पूरा डेटाबेस सेव्ड था, सर्च बार नहीं था, बस बोलो अंकल वो वाला पैकेट है क्या, और आंसर ऑलमोस्ट ऑलवेज हाँ है, रुक निकाल के लाता हूँ अभी के अभी।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: नाइन्टीज का ये लाल रंग हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि इस लाल रंग से हमारी प्यास बुझती थी। What लाल रंग are you talking about? अभी तो फ्राइडे भी नहीं हुआ है, रुक जाओ, बताते हैं, कहीं नहीं जा रहा है। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। 90s में समा ऑफिशियली कब स्टार्ट होता था? टेम्परेचर जब 35 क्रॉस करे तब, जब घर में लाल, गुलाबी या ब्राइट ऑरेंज शरबत का ग्लास देखने लगे तो समझ जाना चाहिए कि समर्स आ चुके हैं। रूह अफ़ज़ा हो या फिर ऑरेंज स्क्वाश हो या लेमन स्क्वाश हो या घर का कोई मिस्टीरियस कॉन्सेंट्रेट जो फ्रिज के डोर में खड़ा रहता था। 90 समर ड्रिंक्स हैड जस्ट वन रूल, कलर दूर से दिखना जरूर चाहिए और शरबत बनाना भी एक प्रॉपर कैलकुलेशन था। ग्लास में पहले सिरप, फिर पानी, फिर मिक्स, फिर उसमें से एक सिप लो। अभी भी फीका है, सो थोड़ा और सिरप डाला, फिर सिप किया, अब ज्यादा मीठा हो गया। एन एक्सप्रेशन की भाई लाइक ये कंकॉक्शन कैसे बनाया जाए, है ना। फिर पानी डाला, अब ग्लास फुल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, राइट, क्वांटिटी डबल हो गई और वो बॉटल कैप के आसपास परमानेंटली थोड़ा सा स्टिकी रहता था। याद आया, आप बॉटल उठाओ तो आपकी फिंगर ना चिपचिप करती थी। फ्रिज में जिस शेल्फ पे रखी है वहां एक हल्का सा जो है सर्कल भी बन जाता था, एविडेंस दैट शरबत वाज हियर। फिर आइस क्यूब्स एक डाला, दो डाले, और अगर गेस्ट आए हैं तो फिर आइस ज्यादा मत डालना, पानी पानी हो जाएगा उसमें। हम क्वाइटली तीसरा क्यूब भी डाल रहे होते थे, बिकॉज वो क्लिंक क्लिंक की आवाज के बिना समर ड्रिंक कंप्लीट कैसे होगा। और 90s आफ्टरनून्स में अगर गेस्ट अगर आपके घर में आ गए तो टी वॉज नॉट ऑलवेज द ओपनिंग एक्ट। गर्मी बहुत है, कुछ ठंडा लेंगे, और किचन में ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता था कि ट्रे निकली, ग्लासेस लाइन में लगाए, एंड ग्लासेस भी हमें चढ़ चढ़ के, क्योंकि नाइस एंड फैंसी वाले ग्लासेस जो है वो तो ऊपर रखा करती थी ना मम्मी, और हमें हम ही से उतरवाती थी कि जरा ऊपर चढ़ के उतार देना ये। फिर ग्लासेस लाइन में लगाई, सिरप डाला, पानी डाला, आइस डाला, स्पून का वो टिंग टिंग टिंग टिंग, और लिविंग रूम से आवाज, कुछ मत करो, कुछ मत करो, अरे बस पानी ले आइए बेंजी, बस। इंडियन हॉस्पिटैलिटी ट्रांसलेशन, शरबत बन चुका है, आपको तो अब पीना ही पड़ेगा। एंड बच्चों के लिए तो सिरप टू वाटर रेशियो वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। मम्मी का वर्जन लाइट पिंक, हमारा वर्जन नियॉन रेड। हमसे कहा जाता था इतना मत डालो, बट हमें लगता था कि यार कलर नहीं आ रहा है, एज इफ टेस्ट सेकेंडरी है, यू नो, शेड करेक्ट होना चाहिए इसमें। टेल मी इफ यू रिमेंबर दिस। ग्लास फिनिश हो गया एंड दिस नॉर्मली हैपेंड विद रूह अफ़ज़ा, ओके, नीचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो रूह अफ़ज़ा रह गया, एंड दैट लास्ट सिप ऑफ रूह अफ़ज़ा वाज द बेस्ट सिप ऑलवेज। आज रेफ्रिजरेटर्स में स्पार्कलिंग वाटर, कोल्ड ब्रू, जीरो शुगर ड्रिंक्स, फैंसी कैंस, सब कुछ है, बट 90s की एक हॉट आफ्टरनून को रिक्रिएट करना हो ना तो मुझे बस एक ग्लास चाहिए, थोड़ा टू स्वीट हमारा रूह अफ़ज़ा, दो तीन आइस क्यूब्स, स्पून का टिंग टिंग, एंड सीलिंग फैन फुल स्पीड। धीरे धीरे पीना, अभी फ्रिज से ताजा ताजा निकाला है ये आवाज, बस। सडनली यू आर नॉट ड्रिंकिंग अ समर कूलर एनी मोर, यू आर ड्रिंकिंग योर स्कूल समर हॉलीडेज। हाय क्या याद है।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना by Amit Dhamelia.
2: It's a must-be partner event.

0: पेंसिल से कसत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: मैं जब जब ये शो करती हूँ मुझे ऐसी ऐसी कभी बातें याद आती है कि क्या मुझे ये बतानी चाहिए अपने बारे में। फिर मैं बता ही देती हूँ इवेंचुअली, विच आई एम गोइंग टू डू अगेन। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आंत्रा आपके साथ मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा है। हम यहाँ पे कसेट्स की बातें करते हैं, राइट। सो जब कसेट्स इंट्रोड्यूस हुए थे तो ब्लैंक कसेट्स भी आपको पता होंगे बिल्कुल इस तरह से। सो ब्लैंक कसेट्स पे एक तो होता था कि हम लोग मिक्स टेप बनाते थे, राइट। तो वो एक एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर में या फिर रेडियो से प्लेयर पे रिकॉर्ड किया करते थे अपने गाने, फेवरेट जो भी चुने हुए गाने। या तो हम भैया जी को दे दिया करते थे एक दुकान में, या तो फिर हम उसको खुद भी करने का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ट्राई कर चुके थे। बट ऑल्सो द फन फैक्ट अबाउट इट, एंड आई थिंक मेरा ये बात करने का जर्नी एंड लिसनिंग टू माई ओन वॉइस ऑन अ कैसेट, इट ऑल स्टार्टेड वे बिफोर, बिकॉज हम ना अपनी आवाजें भी रिकॉर्ड किया करते थे उस टाइम पर। मुझे और मेरे भाई को तो इतना मजा आता था ये एक्सपेरिमेंट करने में। हम ऐसे ही मॉक इंटरव्यूज, जैसे कि जो है कभी कहीं पे कुछ देख लिया और कभी अपनी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं, कभी कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड हमें बहुत ही ज्यादा फन आता था। इनफैक्ट आई वॉज सो ड्रामेटिक, लाइक आई वॉज सो बॉलीवुडिश, आई वॉज सो ओवर द टॉप। मेरे ना मैथ्स में बहुत गंदे नंबर आए थे और मुझे घर पे बताना था। Now, I was so filmy. I was like, बताएंगे लेकिन बहुत ही स्टाइल और टशन में बताएंगे, using all the gadgets available to us. तो yeah, I actually recorded my voice full on. पहले मैंने लिखा कि मुझे क्या बोलना है क्योंकि I have to break the news, but the script has to be emotional enough because I was filmy. And वो फिर script मैंने अपनी आवाज़ पे ऐसे करके उसमें पूरा record किया to the extent मैंने उसमें background music भी डाला। आप level देख रहे हो मेरा वहाँ पे, जबकि ऐसा मतलब आजकल there are so many softwares and everything to do all of these together. There are editors who do this professionally. हमें कुछ आता नहीं है, हमारे पास सामान है, हमें जुगाड़ करना आता है, एंड वी हैव समहाउ फाउंड दिस वे, एंड दैट्स हाउ आई ब्रोक दैट न्यूज टू देम दैट आई हैव गॉट रियली बैड मार्क्स। आई कांट इवन इमेजिन वॉट माई पेरेंट्स वाज मस्ट हैव लाफ्ड और क्राइड, या फिर क्या ही सोचा होगा उन्होंने उस टाइम पे अचानक से जब ये कसेट्स की बार ब्लैंक कसेट में आवाज रिकॉर्ड करने की बात आई। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई हैव डन दिस एज वेल, बट देन दीज ब्यूटिफुल थिंग्स, that is what makes the memories even more special. I don't know whether that cassette still exists somewhere in my house in Kanpur, but well, it is what it is. आपने कभी ऐसा किया है क्या? आप भी कभी इतने फिल्मी हुआ करते थे? नहीं, is it only me? Okay, let's move on. Radio Masti 24/7 पर मस्ती 90s mixtape.

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.
2: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे।
3: कुछ चीजें चली गई, उनकी आदतें अभी भी हैं। ओके, रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतरा आपके साथ यहाँ पर थी और मस्ती 90s मिक्स टेप को रिमाइंड करने का वापस से टाइम आ गया है। आज कहाँ घूम के आए हम? विंटर की धूप में पिघलती हुई कोकोनट ऑयल की बॉटल, दैट्स राइट, पुराने टूथब्रश का क्लीनिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर देखा, मम्मी झाड़ू लेकर आए तो ऑटोमेटिकली पैर ऊपर कर लो, वो कंघा जिसके आधे दांत चले गए लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा, गरम चावल के बीच वो छोटा सा घी का क्रेटर, ट्रेन के विंडो से येलो स्टेशन बोर्ड्स ढूंढना, स्केच पेंस को शेक करके उनमें जान वापस लाने की कोशिश करना, लोकल दुकान के अंकल जिनके दिमाग में पूरा इन्वेंट्री सिस्टम लोडेड हुआ करता था, समर के वो आफ्टरनून्स का ब्राइट रेड रूह अफ़ज़ा वाला शरबत, एंड कैसेट में ऑफकोर्स अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सडनली डिस्कवर करना कि यार नॉट बैड, लड़की अच्छा बोल लेती है ना कितनी रैंडम लिस्ट है ना ये, इनमें से कोई भी चीज तब इंपॉर्टेंट नहीं लगा करती थी। नोबडी वोक अप थिंकिंग दैट आज एक कोर चाइल्डहुड मेमोरी क्रिएट करते हैं, वी वर जस्ट लिविंग इट। मम्मी सफाई कर रही हैं, ट्रेन कहीं तो जा रही है, गर्मी है तो शरबत बन रहे हैं, पेन ड्राई हो गया है तो शेक कर रहे हैं, कैसेट मिली तो अपनी आवाज रिकॉर्ड कर ली, बस। एंड इयर्स लेटर वही बस वाली चीजें इतनी ज्यादा प्रेशियस हो गई। मे बी चाइल्डहुड का मैजिक भी यही था, हमें पता ही नहीं था कि कौन सा ऑर्डिनरी ट्यूजडे, कौन सी ट्रेन जर्नी, कौन सा ग्लास का शरबत या मम्मी का कौन सा रैंडम सेंटेंस फ्यूचर में हमें एक सेकेंड में घर ले जाएगा। एंड दैट्स माई फेवरेट थिंग अबाउट मस्ती 90s मिक्सटेप। सॉन्ग्स तो हम ऑफकोर्स 90s वाले यहाँ पे प्ले करते हैं, लेकिन बीच बीच में ये जो हमारी मेमोरीज निकलती है ना, उनका कोई ऑफिशियल प्लेलिस्ट नहीं है। वो कहीं कोकोनट ऑयल की बॉटल में है तो कहीं एक टूटे हुए कंघे में है, कभी कहीं स्टेशन के येलो बोर्ड पर और कहीं एक पुरानी कैसेट के अंदर कि हेलो मेरी आवाज आ रही है। मैं अंतरा आपकी 90s वाली और ये था मस्ती 90s मिक्सटेप का आज का हमारा सफर। कैलेंडर को अब वापस प्रेजेंट पर लाते हैं, लेकिन 90s का एक छोटा सा पीस वो साथ कर लेकर यहां से जाते हैं। सो कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग एंड अंटिल वी ओपन अनदर कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड मेमोरी नेक्स्ट टाइम, या स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7। बाय बाय एंड टेक केयर।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सिंगापुर। मैं हूं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, नाम है मेरा समर और शो का नाम है लेजेंड्स फिर से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, तहे दिल से स्वागत। लेजेंड्स फिर से एक ऐसी महफिल जहां एक बार फिर मैं हिंदी सिनेमा के मशहूर और मारूफ सितारों की फिल्मी जिंदगी के किस्से, कुछ नगमे उन्हीं की फिल्मों के लेकर आ जाता हूं। हाजिर हूं आज भी। आज हम हिंदी सिनेमा की उस फनकार की बात करने वाले हैं जिन्होंने हीरोइन के तौर पर तो रोल कम प्ले किए हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस किसी भी लीड एक्ट्रेस से ज्यादा ही महत्वपूर्ण रहती थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। जिन्होंने अपने करियर में हर टाइप का रोल प्ले किया, चाहे बहन हो, माँ हो, बीवी हो, और हर फिल्म में उनका एक अलग इम्पैक्ट रहा, याद रखा गया उन्हें। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आपको याद है, अरे लाजो। अच्छा, आपने टीवी पर स्टार उत्सव पर शरारत तो देखा होगा जिसमें ये नानी बनती है। नहीं देखा तो डीडी मेट्रो पर देख भाई देख तो देखा ही होगा। नहीं ये भी नहीं देखा तो फिर आराधना फिल्म का वो गाना आपको याद है, बागों में बहार है, राजेश खन्ना साहब के साथ जो कहती है हाँ है, और फिर जब वो लास्ट में पूछते हैं तुझे मुझसे प्यार है वो कहती है ना ना ना ना ना ना ना ना, याद आया। हाँ जी वही है हमारी आज की फनकार, दीवान एंड ओनली फरीदा जलाल।

फिल्मों में अगर आप फीमेल कैरेक्टर एक्टर्स ढूंढेंगे तो फरीदा जलाल का नाम सबसे ऊपर आएगा। न जाने कितने ही किरदार इन्होंने प्ले किए हैं स्क्रीन पर, जो अमर हो गए हैं और आज भी उतने ही दमदार किरदार वो प्ले कर रही हैं। तो आज अभी शो की शुरुआत करते हैं फरीदा जलाल के इन गानों के साथ, और गानों के उस पार करेंगे इनकी फिल्मी जिंदगी की बातें। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग रेडियो 104.7 लाइव। दिस इज सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो। नाउ ऑन द गो, मैं हूं समर आपके साथ।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं, सितारों को झुका सकते हैं आप।

मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है ये रात, प्यासी है।

0: 6 7 1 4 4.
1: It's a musty partner event.
2: Healthy cow protein cow. Healthy cow protein cow.
3: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
2: Healthy cow protein cow. Healthy cow protein cow.
3: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
1: GG.
3: Crushable nuts only on GGMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
1: GGMart, your personal grocer.
4: Sunte rahiye Legends phir se Summer ke saath.
5: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से और आज की लेजेंड हैं फरीदा जलाल। 14 मार्च 1949 को दिल्ली में इनका जन्म हुआ। शुरू से ही मतलब बचपन से ही एक्टिंग का शौक इन्हें रहा। दिल्ली के पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की। ये स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी कर ही रही थी कि फिल्म फेयर ने उस जमाने में एक कॉन्टेस्ट निकाला साहब, जिसमें जो जीतेगा उसे फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा, ये इनाम था उसका। तो साहब पढ़ाई के साथ साथ इसकी भी ये तैयारी करने लग गई, क्योंकि एक्टर बनने का शौक तो इन्हें बचपन से ही था। तो फरीदा ये मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। बहरहाल कॉन्टेस्ट हुआ और ये पहुंच गई फाइनल तक, और अल्टीमेटली इन्होंने फाइनल जीत ही लिया। लेकिन एक और खास बात थी इस कॉन्टेस्ट में, और वो ये कि फरीदा जलाल फीमेल विनर थी और यहाँ एक मेल विनर भी था। वो कौन था? जी वो थे जो बाद में बने सुपरस्टार राजेश खन्ना। या यूं कह सकते हैं कि काका और फरीदा जलाल की फिल्मी जिंदगी एक साथ शुरू हुई थी साहब, और फिर बाद में उन्होंने एक साथ काम भी किया। अब जो फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट का फाइनल था, उसमें फिल्म मेकर ताराचंद बड़जात्या ऑडियंस में बैठे हुए थे। उनको फरीदा जलाल बहुत अच्छी लगी, और साहब दूसरे ही दिन उन्होंने फरीदा जलाल से कॉन्टेक्ट किया कि क्या आप मेरी अगली फिल्म में काम करेंगी। यानी अब सोचिए कि कहां तो वो स्कूल के फाइनल एग्जाम दे रही थी और कहां इस कॉन्टेस्ट के दूसरे दिन फिल्म का ऑफर आ गया, और वो भी राष्ट्रीय प्रोडक्शन से। सीधे पड़ जाते हैं साहब का फोन आया। खैर तो मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी ने, वरना बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है भैया, एक रोल पाने के लिए सालों लग जाते हैं इंडस्ट्री में। तो इन्होंने बिल्कुल धक्का नहीं खाया, और इस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद लोग धक्का खाते हुए इनके पास आने लग गए। नहीं उसे धक्का नहीं कहना चाहिए, खिंचाव था इनका कि इनकी तरफ चले आए इनकी एक्टिंग को देखकर। तो सिंगापुर आप ये सोच रहे होंगे कि फरीदा जलाल ने क्या कहा ताराचंद जी से जब उनका फोन आया, तो ये फिल्म साइन किया नहीं। तो इसका जवाब आपको मिलेगा इस ब्रेक के बाद। आप सुनिए गाने और वापस आइए, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी फिल्म थी जिसके लिए ताराचंद बड़जात्या ढूंढ रहे थे फरीदा जलाल को। आप सुनते रहिएगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फरीदा जलाल की कहानी समर की जुबानी।
6: मैंने पूछा बागों में बाहर है, गलियों पे निखार है, तो तुमको मुझसे प्यार है।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.
2: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
3: हेलो एंड वेलकम बैक. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ. आज हम फरीदा जलाल की बात करें सिंगापुर. और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि इनके पास ताराचंद बड़जात्या राष्ट्रीय प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जात्या का फोन आया. फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरी नेक्स्ट फिल्म में क्या आप काम करेंगी? अब आप सोचे कि जिसका सपना बचपन से एक्टर बनने का हो, उसे फिल्म का ऑफर मिले तो जाहिर सी बात है वो हाँ ही करेगा. पर फरीदा जी ने ये नहीं किया, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने ये किया और इनको ये फिल्म मिल गई. इनकी पहली फिल्म तकदीर इसका नाम था. अब आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि शायद फिल्म तकदीर की तकदीर में फरीदा जलाल लिखी हुई थी या फरीदा जलाल की तकदीर में तकदीर लिखी हुई थी. भाई जो भी हो, फिल्म अब चल पड़ी थी और फरीदा जलाल की गाड़ी भी यहाँ से

पहली फिल्म हिट होने के बाद अगले ही साल यानी 1968 में इन्होंने दो बड़े कलाकारों के साथ काम किया। एक तो थे धर्मेंद्र साहब और दूसरी मीना कुमारी जी। फिल्म का नाम था बहारों की मंजिल। वैसे ये फिल्म धर्मेंद्र और मीना कुमारी की आखिरी मूवी थी जो उन्होंने एक साथ की थी। अगर आप फरीदा जलाल की फिल्में देखेंगे जो उन्होंने शुरू शुरू में की, तो ज्यादातर रोल इनको बहन के मिले, यानी ये फिल्म में लीड हीरोइन की बहन बनती थी। फिर फिल्म के हीरो का रिश्ता सबसे पहले इन्हीं के लिए आता था, फिर सगाई होती थी, उसके बाद हीरो को फिल्म की हीरोइन पसंद आ जाती थी, फिर सगाई टूट जाती थी। तो फरीदा जलाल के ज्यादातर रोल इसी तरह के रहे हैं शुरू शुरू में, चाहे वो हीरो की बहन बनती हो या हीरोइन की या फिर किसी की फियांसी। वेल सिंगापुर, अभी वक्त है कुछ और गाने सुनने का, और इन गानों के बाद हम बात करेंगे आज की फनकार वर्सटाइल एक्टर फरीदा जलाल की आगे की फिल्मी जिंदगी की। तो आप सुनते रहेगा सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर के साथ ये कहानी।

0: से ही ललचाऊंगा क्या मैं तुझको उतार करके
1: बनती है री आई हाई हट दरिया किनारे एक

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो लेजेंड्स फिर से आप सुन रहे हैं, मैं हूं समर, आपके साथ एक बार फिर से कर रहा हूं आपका स्वागत। और आज हम बात कर रहे हैं वो स्टार एक्ट्रेस फरीदा जलाल की। हमने अब तक फरीदा जलाल की दो फिल्मों की बात की और दोनों हिट रही। 1967 से उनका करियर शुरू हुआ, अब बात करते हैं 69 की। इस साल फरीदा जलाल की वो फिल्म आई जिसमें उनको लीड हीरोइन का रोल मिला पहली बार। अच्छा, ये जो फिल्म थी ना, इसमें एक एक्ट्रेस और भी थी जो ज्यादा बड़े किरदार को निभा रही थी, लेकिन इसमें जो एक्टर था उसका डबल रोल था, तो एक रोल के ऑपोजिट फरीदा जलाल थी और फिल्म थी आराधना और वो हीरो था सुपरस्टार राजेश खन्ना। वही राजेश खन्ना और वही फरीदा जलाल जो एक दिन फिल्म फेयर के फाइनल में एक साथ स्टेज पर खड़े थे, तब कहां इन दोनों को पता होगा कि एक दिन हम एक साथ फिल्म कर रहे होंगे और वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट।
2: तुमको मुझसे प्यार है, बागों में बहार है।
1: तो साहब, इस फिल्म में इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, बहुत सराही गई और इसीलिए प्रोड्यूसर टीएस मुथुस्वामी ने फरीदा से कांटेक्ट किया। ये एक फिल्म बना रहे थे जिसमें लीड रोल में दिलीप कुमार साहब थे। तो जब मुथुस्वामी ने फरीदा से कहा कि क्या आप मेरी फिल्म में काम करेंगी, इसमें आपका बहन का रोल है, फिल्म के हीरो की बहन बनना है आपको, तो फरीदा जी ने इनसे पूछा कि हीरो कौन है, तो उन्होंने कहा यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार साहब। बस इतना सुनना था कि फरीदा ने झट से हाँ कर दी। फरीदा एक इंटरव्यू में बताती है कि मेरा ड्रीम था दिलीप साहब के साथ काम करना, मैं उन्हें रियल लाइफ में देखना चाहती थी, ऑब्जर्व करना चाहती थी कि ये कैसा आदमी है, कैसे काम करते हैं ये, और मेरा ये सपना मुथुस्वामी जी ने पूरा किया। फिल्म में इनका रोल बहुत ही कमाल का था, फिल्म भी बेहद कमाल की थी। ओम प्रकाश, दिलीप कुमार सबने जबरदस्त एक्टिंग की इस फिल्म में। तो आप देखिए, लीड हीरोइन का रोल नहीं मिल रहा था ज्यादा इन्हें, लेकिन बड़ी बड़ी फिल्मों में वो काम कर रही थी और वो भी बड़े बड़े हीरोज के साथ, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार साहब, देवानंद साहब के साथ ये काम कर चुकी थी। और गोपी से, जिस फिल्म का मैं अभी जिक्र कर रहा था, इनका करियर और भी ऊंचा उठ गया। तो फिर इतना अच्छा करियर कहां तक गया, कौन कौन सी फिल्में की फरीदा ने जिसमें उनके काम ने लोगों के दिलों में जगह बना ली, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है ना, इस ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, बयां करेंगे आगे की कहानी। आप रहिएगा समर के साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेशोत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, open field beside Holiday Inn 2 Owen Road, Farrer Park. Maharashtra Mandal Singapore ka Ganeshotsav 2026.
4: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
5: रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ। हिंदी सिनेमा के सितारों की कहानी यहाँ आप सुनते हैं और आज हमने जिस सितारे को चुना है उसका नाम है फरीदा जलाल। फरीदा के नाम के आगे ये जो जलाल लगा हुआ है ना, दरअसल ये नाम उनकी नानी ने रखा था, क्योंकि उनके चचेरे भाई यानी नानी के चचेरे भाई, उनका नाम था जलाल और वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सन हुआ करते थे, एक रुतबा हुआ करता था साहब उनका। तो इसीलिए नानी ने फिर फरीदा के आगे जलाल लगा दिया, क्योंकि बचपन फरीदा ने अपनी नानी के यहीं बिताया। तो बहरहाल दिलीप साहब के साथ फिल्म गोपी करने के बाद 1971 में एक बार फिर राजेश खन्ना साहब के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की और फिल्म का नाम था इस बार अमर प्रेम। यहाँ ये विनोद मेहरा की बीवी बनी है। हालांकि फिल्म में शर्मिला का काम ज्यादा था, लेकिन फिर भी फरीदा का काम भी काफी कमाल का था और ये सराहा गया। लेकिन फिर इस साल इनकी वो फिल्म आई जिसमें इन्होंने बता दिया कि एक एक्टर के लिए उनका रोल इम्पोर्टेंट होता है। ये फिल्म थी पारस, जिसमें इनके साथ थे संजीव कुमार साहब। यहाँ भी ये संजीव कुमार की

अच्छा शत्रुघ्न सिन्हा इसमें विलेन बने हैं। ये दोनों भाई बहन गांव को छोड़कर शहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ ठाकुर अर्जुन सिंह जो कि शत्रुघ्न सिन्हा होते हैं वो इन्हें परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी ये परेशानी खत्म नहीं होती, शहर आकर भी एक मर्डर ये देख लेते हैं और फिर कोर्ट में गवाह बन जाते हैं। बस इसी बीच फरीदा जलाल का रेप हो जाता है, इनका भाई किसी दूसरे शहर चला जाता है और लास्ट में जब दोनों वापस मिलते हैं तो वो फरीदा जलाल को पहचानने से मना कर देता है। तो सिंगापुर कभी मौका मिले तो आप इस फिल्म को देखिएगा, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस रही है इसमें फरीदा जलाल की और इस परफॉर्मेंस के लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फरीदा जलाल की परफॉर्मेंस के बाद अब टाइम है कुछ और गाने सुनने का उन्हीं की फिल्मों से। आपको ये गाने सुनवाते हैं, आप रहिएगा समर के साथ। फरीदा जलाल की कहानी आप सुन रहे हैं रेडियो 24/7 लाइव पर। कीप लिसनिंग।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव। आपने ट्यून इन किया हुआ है और मैं सिंगापुर के इस एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो स्टेशन से आपका इस्तकबाल कर रहा हूं। मेरा नाम है समर, समर लेजेंड्स वाला, और शो का नाम यही है लेजेंड्स फिर से। आज हम बात कर रहे हैं फरीदा जलाल की। 1971 के बाद फरीदा जलाल ने टॉप परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दिया था, और ऐसा नहीं था कि अगर सपोर्टिंग रोल मिल रहे थे तो कोई गाना उन पर नहीं पिक्चराइज होता था। बहुत सारे गाने उन पर फिल्माए गए थे। फिल्म पारस के बाद एक और फिल्म आई जिसमें उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही, और वो फिल्म थी 72 में आई थी फिल्म, और वो फिल्म थी बॉबी। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इनकी। राज साहब का डायरेक्शन और ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म में ये एक पैसे वाले बाप की बेटी का रोल करती हैं, लेकिन ये मेंटली चैलेंज्ड हैं। पिंचू कपूर इसमें इनके पिता बने, और जैसे कि मैंने कहा था कि इन्होंने हीरो की फियांसी का भी रोल किया बहुत सारी फिल्मों में, और होता यह था कि हीरो इनको अक्सर छोड़ दिया करता था हीरोइन से शादी करने के चक्कर में। वैसे ही इसमें भी प्राण साहब जो कि मिस्टर नाथ बने हैं और अपने बेटे राजू यानी राज यानी ऋषि कपूर साहब की सगाई इनसे कर देते हैं ताकि वो पिंचू कपूर से रिश्ता रख सकें, बिजनेस रिलेशनशिप, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन आखिर में ऋषि कपूर साहब सगाई तोड़ देते हैं, तो फरीदा जलाल की मेंटली चैलेंज वाली परफॉर्मेंस इस फिल्म में बेहद कमाल की रही।
2: मैं बॉबी से प्यार करता हूं। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है प्यार करने की। जानते भी हो कि प्यार क्या होता है और किससे किया जाता है। पहले नाले की गंदगी उठाकर हमारे मुंह पर पोंछ दी, अब लाकर घर में भर लेंगे, हम खड़े देखते रहेंगे।
1: वेल, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, आप सुनिए इन गानों को, फिर मिलते हैं इन गानों के बाद। फरीदा जलाल की ये कहानी जारी रहेगी रेडियो 24/7 लाइव पर समर के साथ।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir? Bhajan Baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
1: It's a Masti Partner event.
2: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
3: लीजिए एक बार दोनों बाहें फैलाकर फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं आपका। समर, मेरा नाम है, रेडियो मसी 24/7 लाइव, और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। अच्छा, आप सुन तो रहे हैं और मैं आपका स्वागत भी कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि आपको ये शो कैसा लग रहा है, हमारा ये बदला हुआ अंदाज आपको कैसा लग रहा है। हमारे फेसबुक पेज पर आकर अपने दिल की बात दिल खोल कर लिखे वहां पर। फिलहाल हम फरीदा जलाल की बात कर रहे हैं, आज वही है हमारी आज की लेजेंड। तो मैं आपको बता दूं कि फरीदा जलाल जी ने अब तक लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और हर फिल्म में निभाया हुआ इनका किरदार आज भी याद किया जाता है। हमने बात की 72 में आई फिल्म बॉबी में इनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस की। इसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, जैसे राजा रानी, इसमें एक बार फिर से आराधना वाली कास्ट थी, राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर के साथ थे, और ये फिल्म 73 में आई थी। और इसी साल एक और मूवी आई जीवन रेखा। इस फिल्म में एक नए एक्टर थे तबरेज। रियल लाइफ में जीवन रेखा चली नहीं, लेकिन इन दोनों की रियल लाइफ की जीवन रेखा सुपरहिट हो गई। मतलब इस फिल्म के बाद ये दोनों फरीदा जलाल और तबरेज साहब एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर आगे चलकर 1978 में इन दोनों ने शादी कर ली। अच्छा, इसी बीच उन्होंने कई और फिल्में की जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया, जिनमें मजबूर का नाम मैं जरूर लूंगा। ये फिल्म सलीम जावेद साहब ने लिखी थी जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे, परवीन बॉबी इनके साथ थी और अमिताभ बच्चन की बहन बनी है, ये व्हील चेयर पर रहती है, यानी फिजिकली चैलेंज वुमन का किरदार इन्होंने प्ले किया। जबरदस्त

परफॉर्मेंस इनकी रही और इसी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए ये नॉमिनेट भी हुई। और इसी फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब का फरीदा के साथ यानी अपनी बहन के साथ पिक्चराइज एक गाना बड़ा हिट हुआ और वो गाना ये था।

0: हुए।
1: कुल मिलाकर मजबूर एक अच्छी फिल्म थी। अमिताभ बच्चन साहब के साथ इस फिल्म का जब भी जिक्र होता है तो फरीदा जलाल कहती हैं कि ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इसके बाद भी इन्होंने कई और फिल्में की, लेकिन एक और फिल्म जिसका मैं जिक्र करूंगा जिसमें इनकी परफॉर्मेंस देखने लायक थी, वो थी फिरोज खान के डायरेक्शन में आई धर्मात्मा। इस फिल्म में भी एक बार फिर से ये हीरो की बहन बनती है, यानी फिरोज खान साहब की बहन बनी है। मोना इनके कैरेक्टर का नाम होता है। हालांकि ये फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, एक से बढ़कर एक एक्टर इस फिल्म में थे, लेकिन फिर भी फरीदा जलाल की एक्टिंग वो अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब रही। अभी काम करते हैं, सिंगापुर फरीदा जलाल की कहानी जारी रहेगी, लेकिन अभी ये कुछ बेहतरीन नगमे हैं जो उन्हीं की फिल्मों से हमने लिए हैं, ये आप तक हम पहुंचा देते हैं। इन गानों में फरीदा जलाल को आप महसूस कीजिएगा, हम लौट कर आ जाएंगे। तब तक आप सुनते रहिएगा रेडियो 24/7 लाइव सिंगापुर, ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: खाओ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.
3: गणपति बप्पा
1: मोरिया, तैयार हो सिंगापुर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026।
4: आया देखो आया बप्पा मोरिया,
1: सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा, 14th to 18th September, open field beside Holiday Inn, 2 Owen Road, Farrer Park, महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।

0: तेरा मुखड़ा चूम लूं मैं, तेरा मुखड़ा चूम लूं मैं, सर को रख दूं सीने पे
1: ना बाबा,
0: प्यार करूंगी तीस बार में, प्यार करूंगी तीस बार में, तुझको एक महीने में।
1: ठीक ठीक ठीक।

0: किसने दुख दिया हो, किसी का जिसने चैन लिया हो, बोलो वो सुख पाएगा हाँ
1: नहीं।
0: मैंने तूने इसने उसने बोया पेड़ बबूल का, जिसने आम कहाँ से खा।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी आपके अपने समर लेजेंड्स वाला के साथ। और समर लेजेंड्स वाला देखिए मेरा नाम पूरा ये नहीं है, लेकिन अब क्या करूं, मैं लेजेंड्स करते करते इसी नाम से मशहूर हो गया हूं। तो आज मैं किसकी कहानी सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं ना, हां मैं आज फरीदा जलाल की कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं। अब हम सीधे चलते हैं 1978 में, जब इन्होंने शादी की इसी साल, और इस साल इनकी वो फिल्म भी आई जिसको देखकर श्याम बेनेगल साहब ने इनको एक फिल्म प्रपोज की, लेकिन वो आगे की बात है, वो 94 की बात है। इस साल जो इनकी फिल्म आई वो थी शतरंज के खिलाड़ी। वैसे इस फिल्म में जितने भी एक्टर थे उन सब की ये फेवरेट फिल्म रही है, और इसमें फरीदा जलाल का निभाया हुआ नफीसा का कैरेक्टर कमाल का रहा। इसमें इन्होंने सईद जाफरी, जिन्होंने मीर रोशन अली साहब का रोल प्ले किया था, उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया। फिर इसके बाद याराना में फिर से अमिताभ बच्चन के साथ आई, इसमें ये नर्स बनी, छोटा सा रोल था। पर देखिए क्या होता है ना, कि कहीं ना कहीं बात सच है कि एक अच्छा एक्टर जब भी कोई सिंपल या छोटा रोल भी करता है तो उस रोल का उसकी इमेज पर असर पड़ता है। शायद यही वजह रही होगी फरीदा जलाल की, कि इन्होंने सपोर्टिंग को कभी मना नहीं किया और फिर ज्यादातर ये सपोर्टिंग रोल ही करती रही। यानी अब तक जैसे कि आपको मेरी बातों से पता लग गया होगा कि ये फिल्म में या तो हीरो की या हीरोइन की बहन बनती थी, और कुछ फिल्मों में इन्होंने नर्स का भी रोल प्ले किया। फिल्म याराना जो 1981 में आई थी, उसके बाद इन्होंने फिल्मों से एक ब्रेक ले लिया। उसका एक रीजन ये था कि इनके हस्बैंड ने बेंगलोर में एक सोप की फैक्ट्री डाली थी, तो फिर इनको बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ा उनके साथ। तो इस तरह फर्स्ट इनिंग्स इनकी बेहद कमाल की रही, लेकिन सेकंड इनिंग्स भी इन्होंने शुरू की। वो कब की, किससे की, कौन सी फिल्म थी या कौन सा सीरियल था, हम उसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। यू स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग रेडियो 24/7 लाइव, सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Aamir Khan wondered.
1: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic सुहानी.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Iyer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
8: हेलो जी एंड वेलकम बैक रेडियो मजी 24/7 लाइव पर. आप समर के साथ हैं, लेजेंड्स फिर से सुन रहे हैं और आज हम इस शो में आपको फरीदा जलाल की कहानी सुना रहे हैं, उन्हीं के फिल्मी जिंदगी के किस्से आप तक पहुंचा रहे हैं. तो अब तक हमने बात की थी फरीदा जलाल की फिल्मी जिंदगी की फर्स्ट इनिंग्स की. इसमें इन्होंने ज्यादातर बहन के रोल प्ले किए थे, लेकिन जो दूसरी इनिंग्स इन्होंने शुरू की, इसमें इन्होंने माँ के रोल करने शुरू कर दिए और एक से बढ़कर एक रोल किया इन्होंने. यानी अगर आप हिंदी सिनेमा में माँ के रोल को देखेंगे तो निरूपा रॉय के बाद अगर किसी का नाम आएगा तो वो इन्हीं का होगा, फरीदा जलाल का. 1991 में आई हिना. राज साहब यानी राज कपूर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट थी ये फिल्म. इस फिल्म की शूटिंग के बीच में ही राज साहब की एक लंबी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी. तो जब राज साहब ने फरीदा जी से कांटेक्ट किया था इस फिल्म के लिए काम करने के लिए, तो फरीदा जी ने तुरंत हां कर दी थी, क्योंकि वो एक बार पहले भी उनके साथ काम कर चुकी थी बॉबी फिल्म में. अच्छा, इस फिल्म में हिना में ये हीरोइन की माँ बनी है. बेहद कमाल का रोल इन्होंने प्ले किया है. और कभी आप फरीदा जलाल की फिल्म देखेंगे तो ये बहुत जल्दी बोलती है, लेकिन साफ बोलती है और वो सुनने में अच्छा भी लगता है.
9: खबरदार, जो माँ जैसा पवित्र शब्द अपनी गंदी जबान से निकाला तो जबान किस लूंगी तेरी. आज से ना तू मेरा बेटा है और ना मैं तेरी माँ हूँ. आज इन हाथों ने एक नहीं दो दो चिताएं जलाई है. क्या क्या सपने देखे थे मैंने और तेरे दादाजी ने, आज सबके सब राख हो गए उनकी चिता में.
8: हिना में इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिल गया उस साल. इसके बाद 1993 में अनिल कपूर की ये मां बनी है. फिल्म का नाम था लाडला. लेकिन इस साल इनकी वो फिल्म आई जो फरीदा जलाल के करियर की सबसे टॉप फिल्म बन गई. इसके बारे में हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद. मुझे समझ में आ गया है कि आपको भी समझ में आ गया है मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ. लेकिन देखिए, इसी को तो समझदारी कहते हैं कि मैं इधर से इशारा करूं और आप वहां समझ जाएं. रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव सुनने वाले हमेशा समझदारी होते हैं. हाँ, तो मैं बढ़िया तू भी बढ़िया अगला गाने की तरफ बढ़ लेते हैं. आइए सुन लेते हैं इस गाने को. आप हैं समर के साथ, मजे कीजिए ना, मस्ती है, मस्ती करते

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: लेजेंड्स फिर से में एक बार फिर आप सभी का दिल से स्वागत। बात करने वाले थे हम उस फिल्म की जो फरीदा जलाल के करियर की माइलस्टोन फिल्म बन गई। ये फिल्म बनाई थी श्याम बेनेगल ने और फिल्म का नाम था मम्मू। आपने जो गैस किया था वो फिल्म नहीं है ना ये, मुझे मालूम था आप सोच रहे होंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये फिल्म जो थी मम्मू ये कमाल की फिल्म थी। श्याम बेनेगल जब ये फिल्म बना रहे थे तब उनके दिमाग में सीधा एक ही ख्याल आया और वो था फरीदा जलाल का। जब वो फरीदा के पास गए तो फरीदा ने इनसे पूछा कि आपने मुझे क्यों चुना इस फिल्म के लिए, इस रोल के लिए। तो श्याम बेनेगल साहब ने कहा कि मैंने आपकी दो फिल्में देखी और ये देखकर ही मैंने डिसीजन लिया कि आप इस रोल के लिए फिट रहेंगी। बॉबी और शतरंज के खिलाड़ी, ये दो फिल्में थी जो मैंने देखी। वेल ये फिल्म फरीदा ने की और इतनी जबरदस्त एक्टिंग रही कि कोई जवाब ही नहीं इसका। बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला इस फिल्म के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का। फिर इसके बाद वो फिल्म आई जिसका आप अंदाजा लगाए बैठे थे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में लाजू का कैरेक्टर इन्होंने निभाया जो अमरीश पुरी की वाइफ बनी है। जब वो बोलते ना अरे ओ लाजू, तो ये मतलब हर किसी की जुबान पर आ गया था ये डायलॉग। इस फिल्म के लिए भी इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यानी फिल्मों में माँ के कैरेक्टर का दूसरा नाम फरीदा जलाल हो गया था। आप देखिए सनी देओल की कई फिल्मों में ये माँ बनी है, जैसे सलाखें, जिद्दी, फर्ज और शाहरुख के साथ डुप्लीकेट। इसमें तो बेबी का कैरेक्टर कमाल का ही था। आपने देखी नहीं फिल्म, बड़ी कमाल की थी। अच्छा अजय देवगन की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, इसमें ये भगत सिंह की माँ बनी है। इसके बाद तो मैं आपको क्या बताऊँ, हर लगभग दूसरी बड़ी फिल्म में फरीदा जलाल आपको देखी जाएंगी। और बड़ी बात यह है कि हर फिल्म में उनका काम अलग ही रहता था। काफी सारे टीवी शोज भी इन्होंने किए, जैसे कि 94 में बड़ा हिट शो था देख भाई देख। इसके अलावा श्रीमती श्रीमती शरारत, ये जिसमें नानी बनी है, और काफी लंबे टाइम तक ये शो इन्होंने किया और आज भी ये फिल्मों में एक्टिव है। एक बेटा है इनका यासीन उसका नाम है, जो हालांकि फिल्मों में एक्टिव नहीं है लेकिन फरीदा जलाल आज भी फिल्मों में उतनी ही एक्टिव है और हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही हेल्दी रहें और ऐसे ही हमें एंटरटेन करती रहें और मैं भी आपको एंटरटेन करूंगा। लेकिन आज का वक्त यहाँ पर समाप्त हो रहा है, आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक आप मेरा इंतजार कीजिएगा और कुछ वादे देते जाइए आप मुझे कि आप ये निभाएंगे। तो कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक ने हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
3: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।
0: The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स। वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वॉज अ गर्ल, इफ वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक। बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ट पार्टनर इवेंट।
0: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैंने देहाती, मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने रख दी।

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट।
3: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रिनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tessenson Road. What? Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790.
4: Ishq Sufiana, mera.
3: Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
5: Masti Partner Event.
3: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 Live.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।
1: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend. Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
3: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
4: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में।

0: मुझको राणा जी माफ करना। सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हम, हद हो गई है।
1: दैनिक फ्राइडे मॉर्निंग्स द सफा।
2: Just to get that reaction out of her, this is why I put these songs over here. एकदम पहला पहला कि भाई मुझे पता है कि रेणुका आएगी ना, और जैसे ही गाना सुन चल रहा होगा कि यार अभी तो भक्ति आवर खत्म हुआ, मतलब थोड़ा तो इंतजार कर लेती, मतलब सुबह सुबह राणा जी को बुलाने की क्या जरूरत थी।
0: देखो राणा जी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, भक्ति आवर अपना काम कर रहा है, हर कोई इंसान के जो जितने रूप होते हैं ना। अंतरा जी आप सुबह सुबह मेरी महफिल में आई हैं तो हम आपको बताते हैं कि बाबा जी आपको शरण में लेंगे इस टाइम पर। तो क्या है कि
2: यस बेबे,
0: कि इंसान के अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। अब एक औरत है
2: जी,
0: उसने जन्म लिया एक बेटी के तौर पर, उसके बाद वो बड़ी हुई, कभी वो बहन बनती है, कभी माँ बनती है, कभी वो एक प्रोफेसर बनती है, कभी डॉक्टर बनती है, कभी दादी बनती है, कभी नानी बनती है, और कभी कभी राणा जी के साथ नाच करते हुए कुछ और बनती है। तो ये जो अलग अलग हम रूप लेते हैं ना जिंदगी में, ये सब उस ड्रामा, उस रंगमंच का हिस्सा है जिसके हम कठपुतले हैं, ठीक है।
2: फ्राइडे मॉर्निंग को जो इन्होंने राणा जी का रायता करा है, जो करा है, मतलब मैं बता नहीं सकती।
0: ठीक है, चल तेरा मूड चेंज करने के लिए ठीक है, अब मूड ठीक है,
2: अब ठीक है, अब तो लग रहा है फ्राइडे है, वरना मैंने जय रेणुका दी।
0: भाई साहब फ्राइडे है लेकिन इनमें से लोगों को उठ के काम भी करना है। सुबह राणा जी चल रहा है, उसके बाद माशूका चल रहा है, निकल चुका है ये बेड से, वही होगा आज सब कुछ जो भी होगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, उठ जाओ।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ ऐसे गाना को गाने में घुसा दिया यहाँ पर मस्ती मैडनेस पे. आप है रेडियो को अनंत्रा के साथ. हेलो
2: दे मैं बताऊंगी लगता है आज कुछ ज्यादा ही पढ़कर आई है. बता लड़ मत
1: भाई. जब आप कैब में बैठते हो सो देर आर टाइम्स देर आर थिंग्स यू डोंट लाइक इन द कैब. देखिए कई बार होता है ना कि ये लोग जो कैब में यहाँ पर ना परफ्यूम यूज करते हैं जो एयर फ्रेशनर यूज करते हैं उसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको लगता है कि भाई कैसे थोड़ा सा. और खिड़की खोलो तो कहते नो एसी वर्किंग यू कांट ओपन द खिड़की. हम जाए तो जाए कहाँ. बट वेल ऐसा ही कुछ हुआ थाईलैंड में. अब ये जो हमारे ड्राइवर साहब है इन्होंने एज एन एक्सेसरी वो जो ड्राइवर की सीट होती है और जो पैसेंजर की सीट होती है उसका ऊपर वाला सीट का जो पोर्शन होता है उसके कवर्स आते हैं. ठीक है. अब वो कवर था उसमें था घोस्ट फेस. घोस्ट फेस कवर जैसे वो ग्रज में दिखाते नहीं है एकदम सफेद आंखें और एकदम स्पूटी सा चेहरा. एंड वो भी भाई ऐसा नहीं है कि ड्राइवर के सर की तरफ देख रहा है ये आपको देख रहा है लाइक डायरेक्टली आप उसके सामने एक्सक्यूज मी हेलो मतलब ऐसा दिस इज व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट विद योर पैसेंजर.
2: या और इट्स कस्टमर सर्विस एट द नेक्स्ट लेवल. इट्स ब्यूटीफुल
1: लाइक लिटरली नेक्स्ट लेवल.
2: भाई वाई नॉट. हम तो कहते हैं किसी भी तरीके से कस्टमर को आप याद रह जाएं. दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. दैट्स सर्विस कि आप बार बार सोचें सबसे पहले बीइंग अ पैसेंजर तो आपको सिर्फ वही याद आए. सी यू मेड योर पॉइंट. या
1: कोई नहीं मस्ती मीडिया 24/7 से मस्ती मीडिया नेटवर्क से वॉइस ओवर भी करा रहे उसके साथ साथ चलाते रहे ना पीछे बैकग्राउंड में. अगला स्टॉप
2: इसको ना सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठा दिया लगता है आज.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती मैडनेस जी. हम फ्राइडे है तो कम से कम हमको ये वाला शो करते हुए 10 साल होने वाले. आई कांट बिलीव इट अंतरा.
0: Setting the perfect hot temperature for Friday.
2: I can believe it. Completely. जिस रेट से ये खबरें आती है ना, I can completely believe. आज से मतलब और 10 साल चल सकता है.
1: भाई गिव अस अ शाउट आउट सीरियसली 9151893 पर. अगर आप हमारे ऐप से सुन रहे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पर एक व्हाट्सएप का वहां पर एक बटन है, जरा वहां से एक मैसेज भेजो यार. बताओ कि मस्ती मैडनेस ना हो तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाए. बिजार अंतरा, एक सवाल पूछ रही हूँ मैं तुमसे इस टाइम पर कि हैप्पी आवर्स राइट हर इंडस्ट्री में हो सकते हैं, पर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप हैप्पी आवर्स नहीं सुनना चाहोगे, वो कौन सी होगी? सोचो हैप्पी आवर्स जिसमें कि डिस्काउंट मिलते हैं. बताओ.
2: वन ऑन वन फ्री भी तो मिलता है हैप्पी आवर्स में.
1: ओके, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, आपने कभी सुना हैप्पी आवर्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री में?
2: हाँ, मैं वही बोलने वाली थी. पैथ लैब्स एक फ्री
1: नहीं. सो बेसिकली एक ये जो अपोलो हॉस्पिटल है अपना भारत का, उसने 40% हैप्पी आवर्स डिस्काउंट किया है MRI स्कैन्स के लिए. मतलब आप अगर सुबह के 2 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच में आओगे तो आपको 40% ऑफ मिलेगा. डिस्काउंटेड स्कैन्स अवेलेबल. ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल बिजनेस डिसीजन, बिकॉज उस टाइम पर MRI मशीन्स फ्री रहती हैं, कोई आता नहीं है. सो दे आर यू नो ट्राइंग टू ऑब्वियसली सी दैट. लेकिन उसको हैप्पी आवर्स डिस्काउंट बोलकर 40% ऑफ देना इज अ लिटिल बिट ऑफ, बट इट मेड देम रियली पॉपुलर बिकॉज पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वाई आर. मतलब क्रिटिसिज्म भी हुई, ऑनलाइन डिस्कशन भी शुरू हो गया, लोग काफी अजीब से हंस भी रहे इस बात पर, बट डेफिनेटली उनका हैप्पी आवर्स पॉपुलर हो गया. और क्या चाहिए
2: भाई. मैं कहती हूँ लोगों को बस एक डिस्काउंट दे दो, चाहे वो कुछ. मतलब हमारे मतलब अभी तो कानपुर में मेरी मम्मी के साथ आज टिल डेट तक अगर धनिया के साथ मिर्ची और नींबू फ्री नहीं आए तो मतलब शी इज ऑल योर्स इफ यू गिव अ फ्री स्टफ.
1: ओ माय गॉड. मैं तो कई बार हमारे क्लाइंट्स भी आते हैं हमारे पास तो बोलते हैं इसमें ये एक और ये डाल दो, वो तो धनिया मिर्ची. हेलो, आई लव इट. भारत की याद आ गई.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रिनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 PM onwards, CSE Auditorium, Tessensohn Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.
3: Oi, holy, holy, get.

0: Yeah, baby. Josh
1: made a good morning and welcome. Radio Mercy 24/7 पर क्या चल रहा है?
2: They make Friday mornings the fun.
3: चल रहा है मस्ती मैडनेस रेणुका के साथ. ये है अंतरा बताने वाली है कि कभी कभी लोगों के अतरंगी शौक कितने घातक हो जाते हैं. घातक
1: बता दो, घातक क्या बात है. आई लव द हिंदी.
3: आई नो भाई. कई सारे कपल्स ऐसे होते हैं ना रेणुका, जिनको बड़े शौक होते हैं कि अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में, यू नो, वी विल हैव गुड टाइम बट वी विल डू इट विद द कॉस्ट्यूम्स.
1: रोल प्ले, रोल प्ले, लव इट, लव इट. बच्चे बच्चे लोग कान बंद करें. हाँ जी आंटी, रोल प्ले बता रही है.
3: जी जी जी. रोल प्ले पे इन्होंने पहने हुए हैं फुल गोट, गोट के कॉस्ट्यूम्स दोनों ने. ठीक है, अब हुआ कुछ ऐसा. ये लोग कैंपिंग उसमें बाहर निकले हुए थे. इन्होंने अपना तंबू वंबू वहां पर सब लगाया और इन्होंने अपने अपने गोट के कॉस्ट्यूम्स पहने रोल प्ले के लिए. प्रॉब्लम ये हो गया कि देयर वर पीपल आउट हंटिंग एंड वन ऑफ देम गॉट शॉट.
1: तो ये एक्चुअली ये पहन के बाहर घूम रहे थे. मुझे लगा रोल प्ले तो मोस्टली सिर्फ सिर्फ बेडरूम तक ही.
3: तो इन्होंने तो इन्होंने तो पूरा एकदम माहौल बनाने का सोचा ना कि हम नेचर में एकदम उसके साथ एकदम रोल प्ले करेंगे कि देयर विल बी नेचुरल सराउंडिंग्स एंड वी विल बी गोट्स. आई डोंट नो व्हाट वाज देयर प्लान आफ्टर दैट, बट कुछ ऐसा इनके साथ ट्रेजेडी हो गया ना. लाइक उनके पैर में जो है वो द हंटर्स वर आउट, दे थॉट दे वर रियल गोट्स, सो दे शॉट. एंड
1: ऑफ कोर्स वेल, जिसने भी कॉस्ट्यूम बनाया, कमेंडेबल वर्क, दैट्स ऑल आई कैन से. बाकी तुम इंसान हो, इंसान
3: थोड़ा यार
1: क्या करेंगे. तुम्हारे एक्साइटिंग एक्साइटमेंट के लेवल्स ही अलग है यार आजकल दुनिया में. सैड.

सिंगापुर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th टू 18th सितंबर, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026। Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. Nacho, nacho, nacho, nacho, nacho. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: राइट भाई, इस घंटे को खत्म करने से पहले हम बिल्कुल आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं कि आप अपनी शादी, अपनी जो भी ओकेजन है, उसको अगर एक स्पेशल तरीके से मनाना चाहते हैं तो जरा आसपास चेक जरूर कर ले सराउंडिंग्स को.
3: Setting the perfect hot temperature for Friday.
4: वो तो generally भी नहीं चेक करना चाहिए, like normal people.
2: करना चाहिए, बिल्कुल, you're right. लेकिन अब क्या है कि एक शादी हो रही है, ठीक है, एक अमेरिकन कपल खास तौर पर गए ऑस्ट्रेलिया फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग. और क्योंकि उन्हें लगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में बड़ा यूनिक वाइल्ड लाइफ है, सीनरी है, सो यू नो हम वहां करना चाहते हैं अपनी शादी. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है. रिसेप्शन हो रहा था और सारे डिजर्ट का जो केक वाला टेबल है उसके आसपास सारे के सारे गेस्ट आ गए. अब इन्होंने ऊपर नीचे हर जगह देखा तो इनको पेड़ पे हर जगह डेकोरेशंस नजर आए, लेकिन एक सच का कोआला जो कि वहां पर टंगा हुआ था, उनको लगा कि भाई क्या बात है, बड़ी बहुत रियल डेकोरेशन करी है आज, तो मतलब मजा ही आ गया. अब जैसे वो वहां पहुंचे, वो बेचारा कोआला जो ऊपर टंगा हुआ था उसका ग्रिप छूट गया और वो सीधा सीधा वेडिंग केक के ऊपर पकड़े हुए वेडिंग केक को जोर से हग करता हुआ फटैक. और वो जो उसकी आवाज आई वहां पर गिरने की और उसकी वजह से जो केक हर तरफ लोगों के चेहरों पर पहुंचा, तो जो दूल्हा है वो तो उसे लगा मेरी बीवी तो मुझे अब जिंदगी भर सुनाएगी कि तूने नहीं ध्यान दिया, है ना. लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट द वाइफ, द ब्राइड, शी स्टार्टेड लाफिंग एंड लाफिंग बिकॉज बचपन से कोआला हैड बीन हर फेवरेट एनिमल एंड शी फेल्ट कि यार मेरा ना मतलब एक ऑस्ट्रेलियन शादी का जो मेरा ड्रीम था ना वो आज जाके पूरा हुआ है. एंड ऑब्वियसली सारा कुछ वीडियोस हर चीज पे कैप्चर भी हो गया. तो शी सेड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन ऑन माय वेडिंग डे.
4: And that is why they say beauty in a situation lies in the eyes of the beholder.
2: Yes, in the eyes of the beholder. You are right. Chhota sa break. Milte hain aapko agle ghante. Kahin mat jayega. This is Musty Madness with Renu Khan and Tara.

0: और पहुंच चुके हैं 8 बजे के उस पार रेडियो मस्ती 24/7 मस्ती मैडनेस में अंतरा साथ में है रेनुका
1: Setting the perfect hot temperature.
2: And I'm your darling. Good morning. और यहाँ पर आज है 9/11. जी हाँ 11 सितंबर की बात हो रही है और चल रहा है फ्राइडे का हमारा ये शो. एंड बाय द वे अगर आप ऑनकोर सुन रहे हैं तो सैटरडे है. क्या खबर लाई हो.
0: आइए आपको एक और ऐसी मतलब नॉट एग्जैक्टली द रोल प्ले बट देन काइंड ऑफ बट कुछ हुआ ऐसा कि एक ब्राजील में 5 साल का ये बच्चा जो है गैब्रियल उसका नाम है ये पहुंच गया मिलिट्री पुलिस ऑफिसर के पास ठीक है रिपोर्ट करने कि जब मैं जो है भाग रहा था मेरे अंकल ने मेरे को धक्का दिया.
2: ओके
0: ठीक है. अब जब आप मिलिट्री पुलिस ऑफिसर इट्स लाइक अ वेरी यू नो सीरियस एंड हायर रैंक. अब वो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है बच्चा है बोलने आया है चलो देख लेते हैं कौन अंकल है. अडल्ट टू अडल्ट समझ लेंगे बोल देंगे कि भाई ये सब सारी चीजें तो फिर उसने तो अलग ही लेवल पे चला गया होगा ना ये चाइल्ड अब्यूज का केस ना आ गया हो एंड ऑल दोस थिंग्स. तो बच्चा आया है तो सीरियसली ही हैज टू टेक इट. वहां पर पहुंचा तो जब जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू ही होने वाली थी कि जाओ अपने अंकल को बुला के लाओ अंकल बाहर आए.
2: ओके
0: अंकल भी 5 साल के अंकल बाहर आए.
2: 5 साल के अंकल वो अंकल बन गए.
0: जी हाँ.
2: ओके
0: जी रिश्ते में वो उनके अंकल लगते हैं राफेल और गैब्रियल.
2: ओके
0: जी हाँ दोनों. और मिलिट्री पुलिस ऑफिसर समझ गया कि बेसिकली बच्चे ने बच्चों को धक्का दे दिया. रिश्ते में उनका ऐसा कुछ है कि वो अंकल और उसका नेफ्यू है बट बच्चे ने बच्चों को धक्का दे दिया. उसके बाद नाउ ही कुड हैव टेकन इट लाइक कि डांट वाट दिया होता और समथिंग लाइक दैट कि ऐसे मजाक नहीं करते एंड ऑल दोस थिंग्स बट देन ही डिड नॉट डू दैट. ही एक्चुअली टुक दैट कंप्लेंट सीरियसली. ही प्रिटेंड एंड प्ले किया उसने कि बहुत ही उसके साथ कि नहीं ऐसा करना चाहिए. लास्ट में दोनों का हैंडशेक करा के एक इधर एक उधर हो जाओ वैसे कर दिया पूरा मामला सॉल्व. लेकिन नेवर इन हिज लाइफ टाइम उसने सोचा होगा कि अंकल के नाम पे 5 साल का लड़का बाहर आ रहा होगा.
2: देखिए हमारे कोर्ट्स ऑफ लॉ पर विश्वास हर लेवल पे जिंदगी में होना चाहिए हमको है ना. Alright, moving on, guys. बस हम अगली खबर आपको कुछ ऐसी देना चाहते हैं कि भाई अगर आप किसी आदमी में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको पहले से बता दें क्योंकि बाद में ये बहुत घातक हो सकता है. Borrowing the word from Antra. सुनते हैं गाना. Coming back very soon. Stay tuned.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: अंतरा देखो, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, दोनों में दोस्ती हुई. अब लड़का अगर सीरियस हो गया, दोस्ती के आगे सोचने लगा, और लड़की ने बोला नहीं, मैंने तो तुम्हें कभी किसी और आंख से, नजर से देखा ही नहीं है, तो इसमें कौन गलत है?
0: They make Friday mornings the
2: गलत तो exactly अभी इस स्टेज पे तो कोई भी नहीं है,
1: है ना?
2: Like one side, हाँ.
1: लेकिन उस लड़के ने कहा मैं तुम्हें सू कर दूंगा, वो भी $3 मिलियन के लिए. अब क्या ख्याल है? तो हुआ कुछ ऐसा कि हम सिंगापुर की ही खबर आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस टाइम पर. तो एक सिंगापुरियन आदमी ने सू किया एक औरत को $3 मिलियन के लिए, और हाई कोर्ट लेकर गया फॉर इमोशनल ट्रॉमा, जब उसने ये बोला कि भाई मैं तो तुम्हारी सिर्फ एक दोस्ती हूँ. सो मिस्टर के कौशिगन जो है, उनकी दोस्ती हुई मिस नोरा तानशु में से 2016 में, ठीक है, और 2020 में उनकी फ्रेंडशिप जो है, जो रिलेशनशिप है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गया. When she told him कि भाई मैं तो तुम में सिर्फ एक दोस्त देखती हूँ और मैं अपना तुम्हारे साथ सोशल इंटरेक्शन थोड़ा कम करना चाहती हूँ, तब मिस तान ने पर्सनल बाउंड्रीज बना दी एंड शी ट्राई टू लिमिट कॉन्टैक्ट विद दिस गाय हु थ्रेटन्ड एंड सब्सिक्वेंटली फाइल्ड लीगल एक्शन. अब हाई कोर्ट का क्लेम कुछ ऐसा था कि भाई मिस्टर कौशिगन ने उसको सू किया $3 मिलियन के लिए, क्लेमिंग दैट द रिजेक्शन डैमेज्ड हिज रेपुटेशन, कॉज्ड हिम फाइनेंशियल लॉसेस एंड रिजल्टेड इन इमोशनल ट्रॉमा, जिसकी वजह से उसको थेरेपी जाना पड़ा. लेकिन कोर्ट ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आपने अलग से $22,000 भी क्लेम किए हैं कि भाई एक एग्रीमेंट था हमारे रिलेशनशिप में, जो कि कोर्ट ने कहा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था तुम्हारा, ठीक है. इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा मतलब लड़ाइयां हुई, लेकिन हाँ, अनफॉर्चुनेटली मिस्टर कौशिगन का जो ये सारा का सारा क्लेम है, इट वॉज टाटा नो नो.
2: मतलब ठीक है, हम समझते हैं कि पता होना चाहिए कि कब कहाँ किसको सू कर देना चाहिए, और हम अक्सर मैं और रेणुका यहाँ पे बात करते हैं कि हमें ऐसे मौके क्यों नहीं मिलते हैं, बट देयर इज अ रीजन वी डोंट डू इट, बिकॉज नहीं कर सकते भाई. देयर आर टाइम्स यू जस्ट कैन नॉट फॉर द सेक ऑफ इट कि चलो तुमने मेरी बात नहीं, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया अंजलि, मैं तुम्हें केस कर दूंगा.
1: $3 मिलियन कुछ छोटे मोटे पैसे भी नहीं चाहिए, छोटा मोटा मिलियन है, रिटायरमेंट प्लान कर रहा है उस फ्रेंडशिप पे. हाँ.

0: जब नहीं मिलना होता है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता है, और जब मिलना होता है तो कभी कभी छप्पर फाड़ के मिल जाता है।
1: यस
2: फ्राइडे मॉर्निंग्स।
1: देखो बहन, यही जीवन है, अगर हमेशा मिलता ही रहेगा तो आपको कदर कैसे आएगी ना मिलने वाले समय की। और यू नो हाउ इट गोज, मस्ती मैडनेस है।
0: अब क्या क्या चांसेस हैं इस सिचुएशन के इस तरह से होने का? एक 70 ईयर ओल्ड, ठीक है, मिड फ्लाइट एरोप्लेन के बाद अगर एक हमारे मस्ती मैडनेस शो पे ना हो तो बड़ा ही सूना सूना लगता है। तो आई ब्रिंग द एरोप्लेन टुडे। सो फ्लाइट में 70 ईयर ओल्ड हार्ट अटैक आता है।
1: हाँ,
0: बट आप कोइंसिडेंस देखो, उस एक फ्लाइट में देयर वर 15 कार्डियोलॉजिस्ट।
1: अच्छा, ओए
0: 15 कार्डियोलॉजिस्ट सेम फ्लाइट में,
1: बताओ।
0: सो ऑफ कोर्स दे वन ऑफ देम जो है गॉट इन, बहुत सारे जो है उनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, शी गॉट क्योर्ड एंड एवरीथिंग, बट व्हाट आर द चांसेस कि बंदी को मिड फ्लाइट अटैक आता है और 15 कार्डियोलॉजिस्ट जो है उसी फ्लाइट में उसको मिल जाते हैं।
1: बताओ, मतलब यही तो बात है, आपको जब भी कुछ होना तो आसपास पूरा का पूरा आपका सिस्टम रहना चाहिए, द इकोसिस्टम शुड बी परफेक्ट ताकि आप बच जाए। तो आई थिंक इस बंदी ने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया होगा जिंदगी में, कि कार्डियोलॉजिस्ट ही अपने जा रहे थे पूरे सेमिनार पे, आई बिलीव मे बी ये न्यूज तो हाँ वो अपने जा रहे हैं सारे तो ठीक है चलो। अब क्या है ना कि जैसे मेरा इकोसिस्टम है, एक न्यूज चुरा ली तो बाकी की तो है ना मेरे पास इस टाइम, इसलिए मैं अपना फोन बिल्कुल पास रखूंगी इस टाइम पर, क्योंकि मुझे बाकी की न्यूज नहीं देनी तुम्हें। दिस इज रेणुका एंड ऑफ कोर्स अंतरा ऑन मस्ती मैडनेस। एंड इफ यू लाइकिंग दिस शो गाइस, गिव अस अ शाउट आउट 9151896।

0: to Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: बातें हो गई बहुत सारी इधर उधर की, लेकिन अब थोड़ी साइंटिफिक बातें हो जाएं। आफ्टर ऑल अंतरा और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस ही तो है।
0: दैनिक फ्राइडे मॉर्निंग्स द सफा।
1: क्यों अंतरा, है कि नहीं?
2: और क्या, हमसे ज्यादा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको कोई किसी चीज में दे ही नहीं सकता। बायोलॉजी हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट है। PCM में, PCB में, सॉरी।
1: बस वही बायोलॉजी हमारी शुरू हो गई थी सेक्शन 7 से, और काफी फोकस रहा हमारा क्लास में, बट एनीवे आगे बढ़ेंगे। भाई मैं जब साइंस की बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अमेजिंग अमेजिंग चीज जो कि लूकस ने बनाई है। लूकस सोमन, ही इज कंस्ट्रक्टेड एक 11 मीटर की सोलर पावर्ड यॉट जिसका नाम है हेलियो 11, और $20,000 में बनाई है उसने। और तेको पता है कि वो फ्यूल यूज नहीं करती, मतलब 3000 नॉटिकल माइल्स चल चुकी है फिनलैंड से लेके इबिजा तक, एंड उसने एक, जिसे कहते हैं ना, बूंद ऑफ फ्यूल यूज नहीं करी है। मतलब कमाल, उसने सोलर पैनल्स लगाए, बैटरी बैंक लगाया, एक 6 किलोवाट का इलेक्ट्रिक आउटबोर्ड मोटर लगाया, और उसने कहा भाई साहब ऐसा है अब मैं जा रहा हूँ, और वो निकल गया स्पेन से लेके इबिजा पहुंच गया अपनी यॉट पे, और मतलब जीरो फ्यूल। बताओ और बताओ,
2: मैं कह रही हूँ ऐसे भी लोग ये सारी चीजें भी कर रहे हैं रेनुका।
1: हाँ बिल्कुल कर रहे हैं,
2: जिंदगी में अपने की बनाओ और फिर उस पे निकल जाओ,
1: निकल जाओ सच्ची में।
2: मतलब कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस बनाओ और निकल जाओ
1: यार। पर अंतरा मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ऐसी खबरें जो होती हैं कि एरोप्लेन बनाया निकल गए, है ना, बोट बनाई निकल गए, यार कभी इसमें इंडियन नाम नहीं होता ना, हमेशा CEOs, MD, जब एक बार निकल गए और कमर्शियल प्रोजेक्ट बन गया तो कंपनी चलाने के लिए इंडियन बिठा देंगे ऊपर, है ना, राइट एट द टॉप, लेकिन बनाने वाला क्यों नहीं होता ये बता।
2: उसके उसको मतलब बीवी को भी तो जवाब देना होता है ना इस वजह से।
1: बस वही बात है, वही बात है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन, मैन इज अ वुमन।

सिंगापुर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th टू 18th सितंबर, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।

0: एक जगह एक सीट बना दी है और बस बैठे रहना है, एंड दैट इज योर जॉब.
1: नो प्रॉब्लम.
0: कैसा लग रहा है?
2: दैनिक फ्राइडे मॉर्निंग्स द फन.
1: कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. बैठे रहो, कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी, खाना वहीं आ जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे. ओए होए होए होए.
0: नहीं, आप अपना फोन नहीं यूज कर सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, बस आपको बस बैठे जी हाँ, आपको सिर्फ बैठे रहना है वहाँ पे.
1: अरे नहीं यार, ये मत करो. मैं कहती हूँ और कुछ करे ना करे, आजकल फोन के बिना नहीं रह सकते यार. ओह माय गॉड,
0: फोन पे कैसे एकदम नहीं.
1: हाँ
0: ऐसे आया रेणुका मतलब कि ओके. सो चेंगडू जो है, ये एक जगह है चाइना में, उसकी मेट्रो लाइन 13 जो है वो फुल्ली ऑटोमेटेड है. हाँ. ये पर्टिकुलर एक लाइन, एंड इट रिक्वायर्स नो ह्यूमन ड्राइवर. लेकिन इन्होंने एक स्टाफ मेंबर जो है अलॉट कर रखा है इन फुल व्यू ऑफ पैसेंजर्स पूरी जर्नी के लिए. कोई पार्टीशन नहीं है इस स्टाफ मेंबर और पैसेंजर्स के बीच में. सो बेसिकली ये जो वर्कर है, एक व्हीकल मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस मॉनिटर नाम दिया गया है इसको. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉचिंग द टनल का कंडीशन, ट्रेन का डेटा एंड सिग्नल्स, एंड अगर कोई इमरजेंसी हुई तो आ गया. बट यूजुअली एक आदमी बस पाया जाता है कि वो वहां पे बैठा हुआ है.
1: अच्छा.
0: बस उस एक सीट पे, और ड्यूरिंग हिज वर्क आवर्स ही इज नॉट सपोज्ड टू यूज हिज फोन एंड एवरीथिंग. कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया में मोस्ट मिलंकलिक ट्रेन कैप्टन, मेट्रो हॉस्टेज, क्या अच्छा. क्या नाम दे दिया है उस बंदे को, कि ये सबसे दुनिया की बोरिंग जॉब है.
1: आई कंप्लीटली एग्री. Seriously speaking, I completely agree and I don't want it. There are some very exciting jobs जो हम आपको आप तक लेकर आते रहते हैं, आपको offer करते रहते हैं from time to time. जैसे कि वो सोने वाली याद है, जिसमें कि आपको सिर्फ आराम करना है अलग अलग mattresses में और आपको पैसे मिल जाएंगे.
0: हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट,
1: है ना. और भी खाने वाली, घूमने वाली, और वो hugs वाली, और वो जो बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, millions, सिर्फ साथ में घूमने के, है ना.
0: Do nothing.
1: हमने ये सारी नौकरियां आपको ऑफर करी हैं, आपने कभी आके हमें थैंक यू नहीं बोला. दैट्स रियली बैड. या आई विल मीट यू नेक्स्ट आवर, तब तक थैंक यू भेज देना. ओके, गुड मॉर्निंग.

0: कभी कभी कुर्सी का खेल अपने जीवन के खेल से भी बड़ा हो जाता है। तुम सुन रही हो ना अंतरा, सुन रही हो ना तुम?
1: दैनिक फ्राइडे मॉर्निंग्स द
2: बहुत कुछ बढ़िया आने वाला है जब जब इतनी इंटेंसिटी के साथ रेणुका ने ऐसा कुछ कहा है किस्सा कुर्सी का।
0: यार बड़ी अजीब सी बात है, मतलब एक जापानी आदमी जो कि भारत में है उसको भारत से नहीं जाना था, तो उसने वहां रहने के लिए क्या तरीका अपनाया? सो बेसिकली व्हाट ही डिड, फरवरी में रात के 1 बजे वो एक जेसी नगर के एसीपी के ऑफिस में गया पुलिस स्टेशन के अंदर और उसने एक सफेद रंग की प्लास्टिक चेयर रिसेप्शन एरिया से चुराई, अपने आप को फोटोग्राफ ली उसके साथ में और उठा के घर ले गया। ठीक है, नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड द चेयर बट बिकॉज ही वॉन्टेड द पुलिस टू फाइंड हिम एंड अरेस्ट हिम, क्योंकि उसने ऑलरेडी 19 दिन प्रिजन में कोई पिछले किसी चीज के लिए बिताए थे और उसके बाद पुलिस ने बोला हम तेरे को भारत से निकाल देंगे, ठीक है, डिपोर्ट कर देंगे हम तेरे को। वो जाना नहीं चाहता था, तो उसको लगा कि मैं एक और ऐसा कोई काम करता हूँ ताकि मेरे को और 19 दिन के लिए अंदर डाल दें और फिर मैं डिपोर्ट नहीं कर पाऊंगा और जो मेरे ह्यूमन राइट्स के कंप्लेंट्स है ना इस टाइम पर जो मैं कर रहा हूँ वो रिजॉल्व हो जाएंगे तो मैं लॉन्ग टर्म तक इंडिया में रह पाऊंगा। लेकिन पुलिस बड़ी चलाक, उसने कहा ऐसा है भाई हम कंप्लेंट करेंगे ही नहीं तेरी, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्लास्टिक की कुर्सियां धक्के खाती है, तू रख ले, लेकिन तू निकल भारत से सबसे पहले। तो तनाका ने बड़ी कोशिश करी लेकिन तनाके की बात कोई ना माना और उसको जाना ही पड़ गया बहन, उसको जाना ही पड़ गया।
2: तनाका को पड़ा किस्मत का तमाचा।
0: इतनी चीप कॉमिक सीरीज है ना ये, इतनी चीप कॉमिक सीरीज है दैट आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू बाय इट। ऑलराइट, दिस इज लाइक देयर वाज समथिंग कॉल्ड पता नहीं छोटू और लंगड़ी चुड़ैल, आई स्टिल रिमेंबर दैट, आई एक्चुअली सॉ अ कॉमिक विद दैट नेम एंड इट हैज स्टक ऑन सिंस, यू नो।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: It's a must-be partner event.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: But before we give you more news for this morning and, you know, talking about all the weird things that are happening across the world, let me talk about something very special that is happening in Singapore. वैसे तो मुझे लग रहा है कि वो period शुरू हो चुका है जब एक के बाद एक कमाल के events आ रहे हैं और मतलब exhibitions हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर सिंगापुर में, but this one is worth a mention.
3: They make Friday mornings the fun.
4: यस मस्ती मैडस में इस बारे में बात करना बिल्कुल बनता है क्योंकि इनका मैजिक मतलब बहुत टाइम से चला हुआ है. इनफैक्ट रेणुका आप तो विटनेस भी कर चुके हो लाइव एक बार इनके वन ऑफ द अर्ली एडिशंस.
2: हाँ यार, मैं बात कर रही हूँ इश्क सूफियाना की. अपने अमित धमेलिया जी जो लेकर आ रहे हैं इश्क सूफियाना, दैट्स गोना हैपन ऑन द 26th ऑफ दिस मंथ. आपको पता है कि 15 दिन में एक ऐसा शो है वो शाम के 7 बजे जो शुरू होगा और 9 बजे तक टिच खत्म होगा, लेकिन 2 घंटों में आई प्रोमिस यू कि अमित जी जिस तरह का समा बांधते हैं, यू नो यू हैव टू सी द स्टेज, यू हैव टू सी हाउ ही सिंग्स एक गाने से दूसरा. मैंने खुद विटनेस किया है कि पीपल हैव बीन सो मेस्मराइज्ड, किसी की आंखों में आंसू आता है जब वो गाते हैं मधानिया या यू नो साडा चिड़िया द चंबा, एंड देन सडनली द नेक्स्ट मोमेंट ही इज सिंगिंग द मोस्ट ब्यूटिफुल रोमांटिक गाना, एंड द थर्ड मोमेंट ही इज सिंगिंग समथिंग जिसमें आप तालियों के बिना रह ही नहीं पा रहे हैं. सो इट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग. $60 ऑनवर्ड्स इसकी टिकट्स हैं एंड दिस इज ऑन 26th of September शाम 7 बजे से. अंतरा जी, This is worth it. Tickets कैसे लें ये बताओ. This is on 26th of September शाम 7 बजे.

the most mesmerizing evening on 26th of September. आइएगा जरूर, मिलते हैं आपको बिल्कुल वहीं पर, मैं भी और अंतरा जी भी और हमारी पूरी टीम. A very, very good morning.

0: भाई ये जेंजी, मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट नॉट दिस वन प्लीज.
1: They make Friday mornings the fun.
2: She's going in uncharted territories on Radio Masti 24/7. चल रहा है मस्ती मैडनेस. मस्ती मैडनेस पर हमारी अंतरा जी, जो कि ऑब्वियसली जेन जी नहीं है, कुछ कहना चाहती
0: है. And I'm sure that ये सुनने के बाद आप भी मेरे साथ ही होंगे, like for sure. I am 200% sure. भाई ये TikTok पे अजीब अजीब सी चीजें ये लोग ट्रेंड शुरू करते हैं, and one of these trends recently has been that Gen Z men जो है, ठीक है, they are skipping showers before dates. Pheromone maxing trend बुला रहे हैं इसको.
2: जी बात तो बिल्कुल सही कही है आपने, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में. तो हमारे जमाने पे, आई मीन अब क्या ही ऐसी बात करते हैं हम अपने मम्मी डैडी जैसी आजकल, कि हमारे जमाने में हम दो दिन पहले से तैयार होना शुरू कर देते थे डेट पे जाने से पहले.
0: Exactly.
2: है ना, नहाना तो एक तरफ, सारी दुनिया भर के जितने भी वहां पर क्रीम्स और शैम्पूज और हेयर जेल और मेकअप, मतलब जो कुछ भी था, कोशिश करते थे कि बिना घर में किसी को पता लगे हम सब लगा के पहुंच जाएं. राइट,
0: ट्रू ट्रू.
2: बट ये बिना नहाए क्यों जाते हैं? व्हाट इज इट?
0: Like, I am totally not with it. I don't know about Gen Z men. If you are thinking about this, please make sure that the Gen Z girls also are thinking about the same thing. Aisa na ho ki khud hi soch liya, khud hi trend kar liya aur bandiyan sari bhag rahi ho ki.
2: Exactly. Yeah, I completely agree. Completely agree. Mere khayal se what attracts me the most to anyone is the अच्छी खुशबू और अच्छी ग्रूमिंग. भाई साहब, अब उम्र कह लीजिए आप इसको या जो भी कह लीजिए,
0: नहीं, लेकिन सेम है
2: ना,
0: सेम है.
2: मतलब अगर
0: आई रियली रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट, एंड समटाइम्स मेरा तो परफ्यूम का वो भी कभी, पर एक बार क्या हुआ, ऑफिस की लिफ्ट में किसी ने बहुत ही कमाल का परफ्यूम लगाया हुआ था, हम लोग सब साथ में ऊपर आए.
2: हाँ,
0: अब मैं सोचू कि अब कैसे पता करे कौन सा परफ्यूम है. लाइक यूजुअली गाने का तो होता है कि आजकल थोड़ा गुनगुना दो तो जैसे तैसे करके, परफ्यूम का कैसे पता लगाए कि उसने कौन सा परफ्यूम लगाई थी?
2: पूछ लो, मेरे से कई बार दो तीन लोगों ने पूछा भी है रेस्टोरेंट में इधर उधर कि आपने कौन सा वाला लगाया. मैं बता देती हूँ, मैं तो बड़ी एंथू कटलेट होके बता देती हूँ, क्यों ना बताए. तुम भी कम स्मेल मारोगे अगर, तो उसमें भी मेरा ही फायदा है. इट्स ओके, जस्ट गो गेट इट, आस्क.

0: एंड ऑफ कोर्स ये वाला वीकेंड इज द लास्ट वीकेंड जब आप जीत सकते हैं पर्ल नेकलेस. लास्ट चांस, क्योंकि कल के दिन में यहाँ पर बिल्कुल डिप डिप डिप करके लकी ड्रॉ निकलने वाला है कि कौन जीत रहा है. सो टुडे इज द लास्ट डे गाइस दैट यू कैन गो एंड गेट योर गणपति आइडल फ्रॉम द वन एंड ओनली 21 कफ रोड ज्योति के शोरूम में. और शर्त लगा के मैं कह रही हूँ कि आप कंफ्यूजी फॉर यू टू चूज, राइट अंतरा?
1: मैं तो ये कह रही हूँ कि जब पापा चाहते हैं कि वो भी आए और साथ में पर्ल नेकलेस भी उनके साथ साथ आपकी जिंदगी में आए, तो आप और मैं कौन होते हैं उसको मना करने वाले?
0: कोई भी नहीं.
1: आपने सिर्फ जाना है 21 कफ रोड.
0: बिल्कुल.
1: पापा जो है, आप पापा को चूज करे, पापा आपको चूज करे, फिर उसके बाद आप बस रिसीट रख लेना, क्योंकि वो बस हमें चाहिए होगा और वो हमें भेज देना 9158963 पर.
0: बिल्कुल.
1: एंड उसके बाद जैसा पापा चाहेंगे वैसा ही होगा.
0: बस धन लक्ष्मी की जो बरसात होने वाली है आप पे, वो इसी तरीके से होगी भाई साहब कि आप जरा आज $35 ऑनवर्ड्स वहां पर अमेजिंग से इको फ्रेंडली एंड ऑफ कोर्स आपके घर की बिल्कुल शानो शकत बढ़ाने के लिए जो गणपति जी की मूर्तियां हैं वो आप जाइए लेकर आइए अपने घर पे. एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी द ब्यूटिफुल बिगिनिंग ऑफ गणेश चतुर्थी एंड द फेस्टिविटीज अहेड, राइट? सो On Radio Masti, it's time for us to say happy bye-bye, happy weekend.
1: Happy
0: हमें
1: weekend.
0: भी जाने दो, हमें भी जाने दो, खुद भी जाओ, ऐशे करो, ऐशे. Where's the party tonight, Antra? बता दे, डांस मत कर.
1: अपने अपने घरों में, where's the party tonight?
2: All night. Do you feel alright? Wanna nacho all night?

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.
7: Josh,

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट
3: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: It's a musty partner event.
0: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7. Josh mein raho.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 live.
4: तो final है, कभी I love you नहीं बोलना है, right?
5: Right.
4: Cool. वैसे never say I love you को French में कैसे बोलते
5: हैं? Nadi jamais je t'aime.
4: Nadi jamais je t'aime. Ah, it's so sexy.

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: रात अकेली है
5: तो क्या हम तो आप

0: ऐसा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: रात अकेली है
3: तो क्या, हम तो आपके

नहीं दी जे फिर ना क्यों दस्या नहीं ते मुड़ के जे कि मेरे वांगू फड़े गए ना ते फिर कहते फिरोगे सॉरी अंकल सॉरी मैं तो ट्यूशन बारे पूछना आया जी।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर, मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

वेलकम है जी, अपना ही गराज है। ट्रक्का वाला गीत है जी।

0: की लत्ती।
1: बोल पेट्रोल ते पवाए नी।
2: कोई गल नी, साड़ी गड्डी ते गुडवेल नाल चलती है।
3: जादू है नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है
2: जोश में रहो।
3: क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या

गतित था, लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित भंग था, खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: Now listen. Get up. That's right.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल,
2: आज फिर तुम पे।
0: इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
3: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
7: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: नाचने का मन है?
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Musti 24/7 Live. Have a musti bhara weekend.